सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 भाद्र माह की तिथि 12, तदनुसार 4 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को

समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। श्रोताओं, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं कृष्ण भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जन्माष्टमी के अवसर पर ये कृष्ण भक्ति गीत। प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये भजन। इसी के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए आपको आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे आनंद मोहन पाठक। सुबह 7 बजे समय होगा जोहार चाईबासा का, जिसमें आपको आज हम सुनवा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कुछ बॉलीवुड गीत। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे प्रातः 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र। 8:40 पर होगा कार्यक्रम लोकगीत का माटी की महक, जिसमें आज कुरमाली लोकगीत आपको सुनवाएंगे, कलाकार होंगे लालू महतो और उनके साथी। सुबह 9 बजे हम कार्यक्रम प्रसारित करेंगे विविधा, जिनमें हम कुछ विषयों पर चर्चा करके करेंगे और आपको सुनवाएंगे एक गीत। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें जिसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे और शाम 5:02 पर हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं आनंद मोहन पाठक।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। जोहार चायबासा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, आज का जोहार चायबासा कार्यक्रम समर्पित है उस दिव्य व्यक्तित्व को जिनकी मुस्कान में प्रेम है, जिनकी बांसुरी में मधुरता है, जिनकी लीला में आनंद है और जिनके संदेश में जीवन का सार छिपा है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज का दिन है प्रेम, भक्ति, उल्लास और आनंद का दिन। आज हर ओर गूंज रहा है हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।

तो दोस्तों, आज का दिन है प्रेम, भक्ति, उल्लास और आनंद का दिन। आज हर ओर गूंज रहा है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें कोई कान्हा कहता है, कोई गोपाल और कोई माखन चोर, कोई नंदलाल और कोई प्यार से श्याम या मुरारी, कृष्ण केवल भगवान ही नहीं बल्कि प्रेम है, संगीत है और जीवन जीने की कला है। और दोस्तों, जब कान्हा की बात हो और माखन चोरी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाल गोपाल की सबसे प्यारी शरारतों में एक है माखन चोरी। लेकिन कान्हा की यह चोरी भी कितनी निराली थी। गोकुल की गोपियां शिकायत करती थी, मगर मन ही मन अपने नटखट कान्हा को बेहद प्यार भी करती थी। कहते हैं, भगवान कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि जीवन में मुस्कुराहट और बचपन हमेशा जीवित रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया ये प्यारा सा गीत। माँ जशोदा और नंदलाला का रिश्ता केवल माँ बेटे का रिश्ता नहीं, बल्कि वात्सल्य और प्रेम की सबसे सुंदर तस्वीर है। नटखट कान्हा कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते और कभी माँ यशोदा को अपनी मासूम बातों में उलझा देते, लेकिन यही नटखट बालक आगे चलकर संसार को भगवद गीता का महान संदेश देने वाला योगेश्वर श्री कृष्ण बना। कृष्ण हमें बताते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, कृष्ण भक्ति की उसी मधुर धारा को बढ़ाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सचमुच कृष्ण कितने नटखट हैं, उतने ही प्यारे भी। और दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही सुंदर पक्ष है बांसुरी। कहते हैं जब वृंदावन में कान्हा अपनी बांसुरी बजाते थे तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और प्रकृति भी उस मधुर स्वर में खो जाते थे। बांसुरी हमें भी एक सुंदर संदेश देती है, अपने भीतर से अहंकार को निकाल दीजिए, फिर जीवन में प्रेम और संगीत अपने आप आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कान्हा और उनकी बांसुरी की मधुर याद दिलाता और एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह का गाया फिल्म गीत गाता चल का ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, हम सुनवा रहे हैं और एक कृष्ण भक्ति गीत।

श्रोताओं, हमारा आज का जोहा चायबासा का कार्यक्रम समर्पित है भगवान विष्णु के 8वें अवतार योगेश्वर मुरलीधर, गोविंद गोपाल और हमारे प्यारे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण को। जन्माष्टमी का पर्व भारत में सबसे लोकप्रिय और आनंदमय पर्वों में से एक है। श्रोताओं, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विशेष रूप से मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। और श्रोताओं, इसी अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, राधा कृष्ण की छेड़छाड़, प्रेम और वृंदावन की मस्ती की कल्पना ही मन को आनंद से भर देती है। कृष्ण का नाम आते ही राधा का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम त्याग समर्पण और आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह प्रेम पाने का नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित कर देने का प्रेम है। और जब बात राधा कृष्ण की हो तो संगीत की महफिल और भी रंगीन हो जाती है। और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

दोस्तों, गीत संगीत और नृत्य की बात हो रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, तो इसी से प्रेरित सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर और साथियों का गाया फिल्म सौदागर का ये गीत राधा और कृष्ण का नाम। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रेम और समर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह प्रेम केवल एक सांसारिक संबंध नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। राधा का प्रेम पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव है। राधा कृष्ण की भावना दोस्तों हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में सम्मान, विश्वास और समर्पण बहुत ही जरूरी है। राधा और कृष्ण की इसी प्रेम में रंग को महसूस करते हुए सुनवा रहे हैं आपको और एक गीत।

श्रोताओं, जन्माष्टमी के उत्सव के अवसर पर यह केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं होता है। कई स्थानों पर दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है। ऊंचाई पर दही और माखन से भरी मटकी बांधी जाती है और गाई जाती है ये गीत।

मत डोलो, चिल्लाओगी तब गोरी, जब उलट देगा तोरी गगरी आगे पीछे डगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का पंखा संभाल तेरी गगरी। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का जोहार चायबासा का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सबको पुनः एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow karein.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापार

0: में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस

0: Papers, it's over to Nina Arakel.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the Indian-Belgium ties getting a boost despite the challenging international environment. The Pioneerites in New Delhi and Brussels seek to convert strong economic links into a broader partnership built on trust. 100% chance of El Nino lasting till February 2027 and intensifying into a very strong event in the coming months, raising the risk of floods, drought and extreme heat across large parts of the world, according to World Meteorological Organization reports in the Sun Times. The Indian Express cites the decision of the Apex Court on bar councils have no disciplinary power over law students. And finally, the Times of India mentions the passing away of Gloria Steinem, the US activist and feminist, having a great influence on India on her during her trip to the country. The paper adds Steinem even featured in sari ads as a way of supplementing her income in India. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. ISRO successfully launches its Earth observation satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member joint parliamentary committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends two more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of T20 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 8:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। शहरीकृत जिलों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद छूटे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। पलामू में एसीबी की कार्रवाई। सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जन्माष्टमी को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। आज और कल सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। और 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया नया मीट रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूमि संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के अन्य शहरीकृत जिलों में उपलब्ध भूमि, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी के आधार पर सैटेलाइट टाउनशिप की संभावनाओं पर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी विस्तार और एचईसी से संबंधित विषयों पर वार्ता की, तैयारियों के साथ योजनाओं को समयबद्ध आगे बढ़ाने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के बाद छूटे पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएलए की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 दिनों में जिला और ERO स्तर पर बैठक करने को कहा। फॉर्म 6, 7 और 8 से जुड़े आवेदन और आपत्तियों की सूचियां राजनीतिक दलों को साप्ताहिक रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।
5: KCR प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसलिए किसी का छुपा छुपा के किसी का नाम कट जाएगी करके एक गलत इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपका माध्यम से बताना चाह रहा है, KCR प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसलिए अभी वो सब कितना भी आपका एलिजिबल व्यक्ति है उसका जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं, किसी का नाम में ऑब्जेक्शन है मतलब फॉर्म 7 दे सकते हैं, किसी का भी करेक्शन का है मतलब फॉर्म 8 दे सकते हैं, वो सितंबर 10 तारीख तक।
2: पलामू जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर, नौडीहा बाजार और चैनपुर थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों को पकड़ा गया। मामला करीब 3 दशक पुराने सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 11वें दिन कोल्हान पहुंची। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में यात्रा के दौरान युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर कार्यक्रम और प्रदर्शन किए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई है।
6: ये उल्गुलान है, ये आंदोलन है। जितना खुशी हम अपने आंदोलन से 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई करा के 22 परीक्षाओं को रद्द करा के 17 परीक्षाओं को जांच करा के 6 परीक्षाओं को रोक लगा करके जितना खुश नहीं हुए, उससे ज्यादा खुशी जो हम गांव-गांव जा करके, हम टोला मोहल्ला जा करके, चौक चौराहा जा करके आज जागरूक करके और अपने अधिकार के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे बड़ा खुशी की बात।
2: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज रांची में प्रेस वार्ता करेंगे। मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में सुबह 11:30 होने वाली प्रेस वार्ता में उनके झारखंड दौरे के कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्री गणेश पूजा रांची महानगर जिला महासमिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गणेश महोत्सव 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया और आयोजनों की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकजुटता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में H1N1 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में अब तक 11 मरीजों के संक्रमित पाए जाने की जानकारी है। अस्पताल प्रशासन ने निगरानी और जांच बढ़ा दी है। फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है और संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने टाइगर मोबाइल के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ गश्ती व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, शिक्षण संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन गश्ती, संदिग्धों के सत्यापन और QR कोड आधारित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। साथ ही फायरिंग अभ्यास और 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात कर्मियों के स्थानांतरण का निर्देश दिया। बोकारो में जर्जर भवनों और जल जमाव को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी अधिकारियों और पुराने और जर्जर भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं जल जमाव की समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
7: मैंने ये जो कहा है BSNL को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, वो रेगुलर मेंटेनेंस उनको करना चाहिए और यही करने से ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। सभी अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों के लिए भी ऐसा इश्यू करें कि ताकि वहाँ इस तरह की चीजें ना हो, मेंटेनेंस के अभाव में कल ऐसी स्थिति जर्जर ना हो और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कंसर्न से, अवेयरनेस से लोगों से हमको जानकारी भी प्राप्त हो रही कि कहाँ कैसी स्थिति है।
2: धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने BCCL की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। इस बीच क्रमिक विकास मंच ने भूदशान की घटनाओं को लेकर कार्रवाई की मांग पर संघर्ष करने की घोषणा की है। मंच के सदस्यों ने प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
8: चाची जलापूर्ति की जो पाइपलाइन है, क्या वो रहेगी या उसमें कहीं रुकावट आएगी? क्या जलापूर्ति होती रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि हमारे कतरास बाजार एक बाजार है, और बाजार तभी तक होता है जब उसका ग्राहक होता है। ग्राहक चारों तरफ से भाग रहा है, भगाया जा रहा है, धसाया जा रहा है, तो इस पर चिंतन करने के लिए ये बैठक थी।
2: राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रांची सहित राज्य भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। रांची में दही हांडी प्रतियोगिता व झांकी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। रांची में आज और कल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कई प्रमुख मार्गों पर छोटे बड़े मालवाहक और सवारी वाहनों का परिचालन दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता के अनुसार वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर निवासी युवा एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने झारखंड का मान बढ़ाया है। पंजाब के लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के अंडर 18 बालक वर्ग की हाई जंप स्पर्धा में हिमांशु ने 2.9 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2.8 मीटर के पुराने मीट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेपीएससी और जेएसएससी में हुई कथित अनियमितता मामले में चल रही सीआईडी जांच की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 निजी विश्वविद्यालय के 218 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जांच करेगा शिक्षा विभाग। प्रभात खबर लिखता है, जेटेट 11 अक्टूबर को और रिजल्ट दिसंबर में, टाइमलाइन तैयार। हिंदुस्तान ने लिखा है, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जेपीएससी अध्यक्ष की कब होगी नियुक्ति। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, जांच की जद में उत्पाद सिपाही परीक्षा, तमाड़ में पेपर रटवाते पकड़ाया था सालवर गैंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। शहरीकृत जिलों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद छूटे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। पलामू में एसीबी की कार्रवाई, सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जन्माष्टमी को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव, आज और कल सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित। और 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया नया मीट रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं कुरमाले लोकगीत कलाकार हैं लालू महतो और उनके साथी।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में हम बात करेंगे 4 सितंबर के दिवस, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। तो इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल जंगलों और जानवरों से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है वन्य जीव संरक्षण। श्रोताओं, जब हम वन्य जीवों की बात करते हैं तो हमारे मन में बाघ, हाथी, हिरण, शेर, भालू और अनेक प्रकार की पक्षियों की तस्वीर उभरती है, लेकिन वन्य जीवों की दुनिया इससे कहीं और अधिक विशाल है। जंगलों में रहने वाले छोटे बड़े जीव, पक्षी, कीट, पतंगे और जल में रहने वाले भी अनेक जीव सभी प्रकृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रकृति ने इस धरती पर हर जीव को एक विशेष भूमिका प्रदान की है। कोई जीव जंगलों के संतुलन को बनाए रखता है, कोई बीजों के प्रसार में मदद करता है, कोई कीटों की संख्या को नियंत्रित करता है, तो कोई खाद्य श्रृंखला को संतुलित बनाए रखता है। इसलिए किसी एक प्रजाति का समाप्त होना केवल उस जीव का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे पर्यावरण के संतुलन को प्रभावित करता है। वन्य जीव और वन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ घने और सुरक्षित जंगल होते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन बिताते हैं। वहीं वन्य जीवों की उपस्थिति जंगलों को जीवंत और संतुलित

बनाए रखने में मदद करती है। जैसे कि शाकाहारी जीव जंगलों की वनस्पतियों के संतुलन में ये भूमिका निभाते हैं, जबकि मांसाहारी जीव शाकाहारी पशुओं की संख्या को नियंत्रित करते हैं। यदि जंगल से बड़े शिकारी जीव समाप्त हो जाएं, तो शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ सकती है और जिसका प्रभाव वनस्पतियों तथा पूरे पर्यावरण पर पड़ सकता है। वन्य जीव हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति में हर जीव का एक अपना महत्व है। कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं होता। आज वन्य जीवों के सामने अनेक चुनौतियां हैं दोस्तों। इनमें सबसे बड़ी समस्या है वनों का कम होना और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। बढ़ती आबादी, सड़क निर्माण, उद्योगों का विस्तार और कई प्रकार के विकास की गतिविधियों के कारण आज कई क्षेत्रों में जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। जब जंगल कम होते हैं तो वन्य जीवों का घर भी छिन जाता है। भोजन और पानी की तलाश में कई बार जंगली जानवर मानव बस्तियों की ओर आ जाते हैं, जिससे कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अवैध शिकार और वन्य जीवों की तस्करी भी एक गंभीर समस्या है दोस्तों। कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं या उनके अंगों का अवैध व्यापार भी करते हैं। यह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि प्रकृति के प्रति एक गंभीर अन्याय भी है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन भी वन्य जीवों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज तापमान में बदलाव, अनियमित वर्षा, सूखा और जंगलों में आग जैसी घटनाएं उनके प्राकृतिक आवास और भोजन पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है। श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि वन्य जीवों की रक्षा केवल वन विभाग या सरकार का काम है, लेकिन वास्तव में इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने स्तर पर कई छोटे छोटे कदम उठाकर इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे हम जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, वन्य जीवों का शिकार करने वाले या अवैध गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभाग को दें, जंगलों में आग लगने से बचें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें, प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करें, वन्य जीवों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें, जंगलों और वन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते समय नियमों का पालन करें, बच्चों और युवाओं को प्रकृति तथा वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनाएं। तो श्रोताओं, विशेष रूप से हमें यह समझना होगा कि जंगली जानवरों को उनका प्राकृतिक घर चाहिए। यदि हम उनके जंगलों और प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखेंगे तो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे झारखंड राज्य की पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा और वन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। यहाँ के जंगल अनेक प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों का घर हैं, इसलिए झारखंड में वन और वन्य जीव संरक्षण का महत्व हमारे लिए और भी बढ़ जाता है। स्थानीय समुदायों की भूमिका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के पास प्रकृति और जंगलों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान होता है। यदि स्थानीय समाज, वन विभाग और आम नागरिक मिलकर काम करें तो वन्य जीव संरक्षण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आज के बच्चे और युवा कल के नागरिक हैं। यदि बचपन से ही उन्हें पेड़ पौधे, पक्षियों और जानवरों के प्रति प्रेम करना सिखाया जाए तो भविष्य में एक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। विद्यालयों में प्रकृति भ्रमण, पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम, वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाकर इसे और भी लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल और किताबों की दुनिया से भी बाहर एक सुंदर

0: रह सकेंगे दोस्तों और आने वाले कल के सपनों को साकार कर सकेंगे। तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस पर वन्य जीव संरक्षण पर।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और इस संदेश के बाद श्रोताओं, आप सबों का कार्यक्रम विविधा में फिर से स्वागत है। और अब श्रोताओं, हम बात करेंगे आज के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। श्रोताओं, हमारे लिए, हम सबों के लिए आज की यह बेला कुछ खास है, कुछ पावन है, कुछ ऐसी है जिसमें भक्ति की मधुर सुगंध खुली हुई है। चारों ओर श्रद्धा का वातावरण है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, शंखनाद की पवित्र ध्वनि गूंज रही है और भक्त का हृदय एक ही नाम का स्मरण कर रहा है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। तो श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वह नन्हा सा कान्हा जिसके अधरों पर बांसुरी थी, सिर पर मोर मुकुट था, आंखों में प्रेम था और जिसकी मुस्कान ने पूरे संसार को अपना बना लेने की अद्भुत शक्ति थी, वही कान्हा जो कभी माँ यशोदा की गोद में नटखट बालक बनकर खेलते थे, कभी ग्वाल बालों के संग माखन चुराते थे, कभी राधा के प्रेम में प्रेम की परिभाषा बन जाते थे और समय आने पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को जीवन का महान संदेश श्रीमद् भागवत गीता देते हैं। श्रोताओं, कितना अद्भुत है श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेम करें लेकिन सच्चे मन से, कर्म करें लेकिन फल की चिंता किए बिना, और जीवन में विश्वास रखें, क्योंकि जब हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद होता है तो कठिन से कठिन राह भी हमारे लिए आसान हो जाती है। तो श्रोताओं, इस पावन जन्माष्टमी पर अपने मन के द्वार खोल दें, अपनी चिंताएं, अपने दुख, अपनी परेशानियां और उस नटखट नंदलाल के चरणों में अर्पित कर दें और पूरे प्रेम एवं श्रद्धा के साथ कहें कि हे कान्हा, हमारे जीवन में भी प्रेम भर दो, हमारे मन से निराशा दूर कर दो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करो और अपनी कृपा की छाया सदा हम पर बनाए रखो। और सुनते हैं इस पावन वातावरण को और अधिक भक्तिमय बनाते हुए ये मधुर भजन।

0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन प्रस्तुत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम रस रंजन में आज आप सुनेंगे जन्माष्टमी स्पेशल ये गीत।
1: हमारे भारत में और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम था कृष्णा। और अब आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और साथियों का गाया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
8: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
7: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन, और आज हम सुनवा रहे हैं आपको जन्माष्टमी स्पेशल ये गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया एस डी बर्मन की धुन पर फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत, और अब सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया रविंद्र जैन के गीत संगीत में फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत। और अब श्रोताओं, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं जन्माष्टमी की धूम में ये गीत।

मुंबई मिरर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त होता है। आप सुन रहे थे वाजिद अली और साथियों की आवाज़ों में ये गीत।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
2: जी
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो

0: स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है
0: जी। और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए
1: जी। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic

0: उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा

0: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
1: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी
2: जी राणा जी महाराज,
1: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद चरणामृत।
2: जी महाराज।
1: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
2: रानी सा की जय हो।
0: आओ सखी, भीतर आओ।
2: जी वो
0: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
2: वो कुछ नहीं।
0: कहो ना सखी, क्या बात है?
2: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
0: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
2: पर हमें तनिक शंका होती है।
0: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
2: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
3: राणा भेजिया विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ,

0: कितनी भली है रानी सा,
1: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा, मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
3: वो देखो वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
4: प्रणाम रानी सा।
5: प्रणाम रानी सा।
6: प्रणाम।
7: जय श्री कृष्ण भाई।
8: जय श्री कृष्ण।
9: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
7: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
10: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
7: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
3: राजकुमार भोजराज की विधवा और
7: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहाँ वो अपने कान्हा की चाकरी करती।
2: चाकरी?

0: हीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: कितनी मधुर आवाज़ है।
1: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
1: क्या?
3: हाँ, पर वो गई नहीं।
4: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
3: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
4: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
1: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गई और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गई।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
7: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
3: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ, 61 किलोग्राम। अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
8: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
2: और चीटी की मम्मी,
3: उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा। 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
10: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT आकाशवाणी का ये चैनल।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब वक्त है जोहार रांची कार्यक्रम का। जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कार्यक्रम में मीनाक्षी
1: और मैं हूं रितेश। हम दोनों का जोहार और नमस्कार स्वीकार करें।
0: बिल्कुल
1: मीनाक्षी, कैसी हैं?
0: बहुत बढ़िया।
1: मौसम तो अब थोड़ा, आज देख रहे हैं, थोड़ा बदला बदला लग रहा है। कुछ खिली खिली धूप भी नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद कुछ मौसम ने करवट ली। अच्छी बात है,
0: आज से मौसम खुलने का अनुमान भी है,
1: है ना? तो ये अच्छी बात है, थोड़ी बारिश के बाद थोड़ी सी राहत मिल जाए। चारों तरफ नदी नाले थोड़े उफान पे हैं, वो उसमें थोड़ी कमी आए, है ना? और चलो कार्यक्रम में और क्या
0: है, बताओ। आज तो बहुत खास दिन है रितेश।
1: अरे क्या बात है,
0: आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को इसकी ढेरों शुभकामनाएं।
1: हाँ, हमारे तमाम श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज के दिन ही रात्रि में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था, है ना? आज अष्टमी भी है ना? क्या
0: अष्टमी, और अष्टमी के दिन ही होता है उनका जन्म। भाद्रपद के अष्टमी।
1: वो बिल्कुल काली काली रात थी, वो बरसात भरी रात में। इसकी बहुत ही विस्तृत कथा है, उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। पर हमारे श्रोताओं के लिए अगर इससे कुछ है तो हमारे श्रोताओं कुछ गाना सुनवा दो।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये गीत सुनवा रहे हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी

0: के लिए ना को टोल फ्री नंबर 1-09-07 पर संपर्क करें या ना को एड्स ऐप पर डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का। और अब आपको मौसम के बारे में भी बताते चले कि झारखंड में लगातार हो रही बारिश से अब राहत मिलने वाली है। शुक्रवार यानी आज राज्य का मौसम खुल सकता है और बादल छट सकते हैं, ऐसा अनुमान है। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ स्थानों को छोड़कर बारिश होने की संभावना कम है। पिछले कई दिनों से कायम रहने वाला निम्न दबाव क्षेत्र अब कमजोर हो चुका है और अगले 5 दिनों के दौरान मौसम खुला रहने का भी अनुमान है और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। राज्य में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम 21.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
2: और आज के शहर में कुछ बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, कृष्णा जन्माष्टमी को लेकर, ऐसे में कुछ शहर में कुछ तब्दीली की गई है, कृपया आप हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर अल्बर्ट एक्का चौक के पास 4 को झांकी और 5 को दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, यानी कल दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसको लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 4 और 5 सितंबर की सुबह 6 से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो आप इसका ख्याल रखें, जब आप बाहर निकले आज और कल तो ट्रैफिक को देखते हुए आप अपने काम पर निकलें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या कहना है अपने श्रोताओं को, एक
2: प्यारा सा चलो फिर से एक गाने सुनवा दिया जाए। हाँ।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम जोहार रांची में। अगला सेगमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कुछ बताओ मीनाक्षी।
1: हाँ, अब हम रुक करेंगे इतिहास की तरफ।
0: बिल्कुल।
1: आज है 4 सितंबर, तो आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर हम नजर
0: डालते हैं।
1: 1781 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स शहर की स्थापना स्पेनिश वासियों ने की थी आज के दिन। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन को रोल फिल्म कैमरे के लिए पेटेंट मिला था आज के दिन। 1985 में टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 साल बाद समुद्र के भीतर उसकी पहली तस्वीरें सामने आई थी। और 1998 में इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी आज के दिन।
0: बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेशन है ये।
1: और इसके अलावे हम उन पर भी, उन व्यक्तियों पर भी नजर डालते हैं, खास व्यक्तियों पर जिनका आज जन्म हुआ था। तो भारतीय राज्य असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ रहे गौरव गोगोई का जन्म आज के दिन 1982 में हुआ था। और भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे, 1962 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और केवी रघुनाथ रेड्डी, ये जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, इनका जन्म भी 1924 में आज के दिन हुआ। और इसके अलावा आज भारतीय फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक ऋषि कपूर का भी जन्मदिन है,
0: जिन्हें हम प्यार से चिंटू भी कहते हैं ना। वो एक सदाबहार अभिनेता राज कपूर साहब के सबसे छोटे संतान थे ना,
1: दूसरे पुत्र थे।
0: और उन्होंने अपने पिता की परंपरा को, अपनी विरासत को बहुत ही अच्छे से निभाया, बढ़ाया, और बॉलीवुड में एक समय तक वो बहुत ही सदाबहार हीरो के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो चिंटू जी को, ऋषि कपूर जी को जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं।
1: और वो आज हमारे बीच तो नहीं है,
0: लेकिन उनके बनाए बहुत सारे फिल्में, गाने एक से एक गाने हैं जो हमारे
1: निर्देशित फिल्में भी हैं, जो कि आज लोग देखते हैं और गानों को सुनना पसंद करते हैं।
0: कलाकार कभी रुख्सत नहीं लेते हैं ना, वो दुनिया से रुख्सत लेते हैं, बट उनकी बातें, उनकी यादें हमेशा रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, तो वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे अपने शानदार व्यक्तित्व के जरिए। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को एक गीत ही, उन पर फिल्माया हुआ ये गीत।
0: एकदम एकदम।

0: वाकई बहुत ही सुंदर नगमे के साथ हम फिर से हाजिर हैं श्रोताओं के लिए। और अगला
1: सेगमेंट इतिहास
0: बताओ।
1: में अभी अभी इतिहास में ही हैं हम, और इतिहास में हम उन महान व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं जिनका आज हुआ था जन्म। तो हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक और संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। इनका जन्म भी आज के दिन 1906 में हुआ था। बंगाली कवि, लेखक और फिल्म निर्देशक थे प्रेमेंद्र मित्र। 1904 में इनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। 1995 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सिया रामशरण गुप्त का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म भी 1825 में 4 सितंबर को ही हुआ। अच्छा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, लेखक और समाजशास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त, इनका जन्म भी 1880 में 4 सितंबर को हुआ। और अब उनका जिक्र करते हैं जिनका 4 सितंबर को हुआ था निधन। तो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती, 1997 में आज के दिन इनका निधन हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक थे बलदेव प्रसाद मिश्र, इनका भी निधन 1975 में आज के दिन हुआ। भारतेंदु कालीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक मोहनलाल विष्णु पांड्या, 1912 में इनका निधन हुआ था आज के दिन। और अब आगे बढ़ते हैं, और आज कौन सा खास सप्ताह चल रहा है ये भी अपने श्रोताओं को बताएं।
0: बताइए।
1: तो अभी चल रहा है भारत के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत में ये मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है।
0: बहुत ही अच्छे।
1: और ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाता है। और पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है।
0: अच्छा।
1: संतुलित आहार और सही खान पान के बारे में लोगों को शिक्षित करना भी इसका लक्ष्य है।
0: बहुत अच्छी बात।
1: भारत सरकार की पहल के रूप में पहला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1982 में मनाया गया था। तब से इस सप्ताह का उपयोग विभिन्न आयु समूहों में संतुलित आहार, पोषण संबंधी कमियों और पर्याप्त पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। और स्वस्थ आहार का महत्व भी अपने श्रोताओं को बताएं कि भोजन शरीर को दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, ये तो सभी जानते हैं। एक स्वास्थ्य आहार कई पहलुओं का सहारा देता है, और वो कौन से पहलू हैं उन पर भी हम नजर डालते हैं। जैसे पोषक तत्व सामान्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था के दौरान। इस समय ही हमें पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है।
0: बढ़ते बच्चे कहते हैं ना, बढ़ते बच्चे। और जब जब शरीर का जब बिल्कुल ये
1: जब विकास होता रहता है और होता है, और जब एक ऐसी अवस्था आती है यानी वृद्धावस्था, उस समय भी पोषक
0: अनिवार्य होते हैं। जब हम बहुत सारे अन्न एक साथ नहीं ले सकते, तो कम अन्न में ही इतने अच्छे पोषक मिल जाए, तो वैसे खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब हमें उस ओर ध्यान देना है कि ज्यादा खाने पर ध्यान नहीं देना, हम
0: कम
1: क्वांटिटी में क्या चीज ले रहे हैं वो ध्यान।
0: हाँ, कम क्वांटिटी में ही खाएं, लेकिन वो खूब भरपूर पोषण से, वो पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो, जिससे कि हमारे शरीर में वो ऊर्जा और वो विटामिन्स की कमी ना रहे।
1: हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन दैनिक गतिविधियों और शरीर के कार्यों के लिए हमें ऊर्जा देता है, तो इन सब चीजों को हमें शामिल करना चाहिए। और प्रोटीन अन्य पोषक तत्व उत्तकों को बनाए रखने और उनकी मरम्मत करने में भी मदद करता है। पर्याप्त पोषण प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज में सहायक होता है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में भी पोषक तत्वों का अहम रोल होता है।
0: यानी ऐसे में हम बहुत सारे फ्रूट्स जो वेजिटेबल फ्रूट्स है ना, ड्राई फ्रूट्स, इसको अगर कम मात्रा में लें तो भी हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं अनिवार्यताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है।
1: और कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी
0: बहुत जरूरी है।
1: जैसा कि कहा जाता है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की बोलते हैं कि कैल्शियम का सेवन हमें करना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर हमारे हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होने लगती हैं और बुढ़ापे में हमें ये दिक्कत करती हैं।
0: और खासकर मैं महिलाओं के बारे में बता दूं मीनाक्षी कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र प्रौढ़ावस्था में बढ़ती जाती है उनकी हड्डियों का क्षय होने लगता है ना, तो ऐसे में कहा जाता है आयरन फोलिक और क्या क्या ये अनिवार्य रूप से महिलाओं को लेना चाहिए।
1: हाँ, और इसलिए स्वस्थ खान पान का मतलब सिर्फ कम खाना या किसी विशेष आहार का पालन करना नहीं होता है। इसका मतलब है नियमित और संतुलित भोजन के माध्यम से शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करना है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो हम अपने श्रोताओं को अब एक गीत भी सुनवा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सुनवाओ।

0: इतिहास की बातें हो गई और अब हम कुछ अलग अपने श्रोताओं को बताते हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: क्या बात है,
0: कितनी अच्छी बात है। और गगनयान अभियान के जरिए मानव को अंतरिक्ष में भेजने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ ही देश का अगला बड़ा लक्ष्य स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाना है। अंतरिक्ष दृष्टि 2047 के तहत मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये एक खोज है जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है ये।
1: और मानव जब अंतरिक्ष पर पहली बार गया होगा तो सोचो कि कैसी अनुभूति हुई होगी, नहीं? और फिर जब मानव जब पहली बार जब चांद पे उतरा होगा तो फिर कैसी अनुभूति हुई होगी, है ना? वो कैसा दृश्य रहा होगा जब हम हम तो कल्पना से ही मात्र से रोमांच हो जाते हैं कि जब मनुष्य ने चांद पर पहला कदम रखा उसे क्या क्या दिखा, क्या अनुभूति हुई। तो विज्ञान ने जब ऐसी चमत्कारिक प्रगति की है और आज तो हम मंगल मिशन पर हैं, है ना? मंगल पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि वहां भी कोई जीवन है क्या, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले जब ये शताब्दी में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि शायद धरती से इतर हम अंतरिक्ष में भी कोई नया शहर बसा ले। अभी तो
0: वाकई अंतरिक्ष के बारे में नई नई खोज हमें रोमांचित कर देती है।
1: हर
0: बार इस बात से खुश हो जाते हैं कि अब अंतरिक्ष में हमारा पहला अगला कदम क्या होगा और हम अब किस ओर बढ़ रहे हैं। विज्ञान ने हमें बहुत इसमें मदद की है।
1: तो अभी बहुत सारे ऐसे शोध किए जा रहे हैं जहाँ पर पृथ्वी से इतर जीवन की तलाश में वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, चंद्रमा है, मंगल है। अब देखते हैं आगे मनुष्य क्या क्या करता है, कहां पर धरती से इतर कोई सभ्यता की तलाश करता है और वहां पर नए जीवन को वहां पर स्थापित करता है। कह रहे हैं ना कि शायद एक नासा ने एक ऐसी एक बनाई है बॉडी जिसमें आप कुछ पैसे लगाकर, बहुत सारे पैसे लगाकर आप अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं, वहां पर अपने स्पेस बुक कर सकते हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में विज्ञान और क्या क्या चमत्कार कराता है। अभी
0: प्रगति ही
1: करेगा। एआई ने अभी धूम मचा रखा है, एआई ने हमारे बहुत सारी चीजों को आसान किया है, इंफॉर्मेशन को, मतलब हाथ में, आपके हाथ में आपकी दुनिया है, छोटी सी दुनिया सिमटकर आपके हाथ में आ गई।
0: और अब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना?
1: तो आगे बढ़ने की रफ्तार अगर इस कदर कायम रही तो फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं ना कि मनुष्य का काम रोबोट करेगा। अब एक फिक्शन में पढ़ रहा था, उसमें आज से 100 साल पहले किसी एक लेखक ने कल्पना की थी कि मनुष्य को रोबोट रिप्लेस करेगा। शायद समय नहीं आए तो मनुष्य को रोबोट तो रिप्लेस पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन मशीनी चीजों पर मनुष्य बहुत अधिक डिपेंडेंट करता जा रहा है। अब तो देख रहे हो ना, ड्राइवरलेस व्हीकल आ गए ना, यानी अब आपकी गाड़ी में ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वो डेस्टिनेशन तय उसमें फीड कर दीजिए कि आपको रांची से पटना जाना है, कहां जाना, कहीं जाना है। अभी हमारे देश में सुविधा देखते हैं कब आती है,
0: आजकल तो हमारे मोबाइल में कितनी सुविधाएं हैं जो हमारे लिए आसान हो गई हैं, जिससे हमारे काम आसान हो गए हैं। तो अब आगे आगे देखना है कि विज्ञान
1: मनुष्य सभ्यता की प्रगति के लिए, सभ्यता

0: बहुत ही शानदार गाने के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम जोहार रांची में सबों का स्वागत। और क्या है कुछ बताओ मीनाक्षी, कुछ खेल खिलाड़ी से कुछ बात किया जाए क्या?
1: हाँ,
0: है ना, अभी महिला का जो चल रहा है, महिला T20 का मैच चल रहा है हांगकांग के साथ में, कल एशिया कप में कल मंधाना ने अपने तूफान से क्या कहते हैं हांगकांग को उड़ा दिया, है ना
1: स्मृति? एशिया कप में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बनी,
0: क्या बात है। 137 रन की जीत से भारत सेमीफाइनल में, यानी हम उम्मीद करते हैं कि भारत को एक सुंदर सा पदक मिले और महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि आने वाले ओलंपिक में हम और पदक लें, हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित भारत की परिकल्पना को तभी हम पूर्ण कर सकते हैं जब हम हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन करें। अगर हम खेल की दुनिया में अपने पदक बनाएंगे, अपना जौहर दिखाएंगे, तो फिर हम विकसित भारत की श्रेणी में बिल्कुल ही शामिल होंगे। बहुत ही अच्छी सोच है प्रधानमंत्री जी की, और ऐसे में हमारी बेटियों ने कल बहुत ही सुंदर ये काम कर दिखाया।

0: एक हांगकांग की टीम को बहुत ही बुरी तरह परास्त किया है ना।
1: हाँ, और खेल खबरों में और कुछ है प्रेक्षकों को बताने के लिए?
0: कल से जो है सीसीएल अंतर कंपनी टीटी और बैडमिंटन स्पर्धा शुरू होगी खेलगांव में। इसके साथ अब
1: और धोनी आईपीएल में इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में नहीं खेलने वाले।
0: हमारे धोनी, हमारे माही माही की फैन फॉलोइंग अभी भी बहुत ही जबरदस्त है। माही से हमारे झारखंड ने बहुत ही नाम कमाया, खासकर हमारी रांची शहर के जो हमारे माही हैं। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत जगह अभी भी परिचय देना पड़ता है कि भाई मैं धोनी के शहर से आया हूँ, तो वो लोग बड़े जिज्ञासा बस कौतूहल बस पूछते हैं, भैया धोनी को आपने देखा है? मैं बोला हाँ यार धोनी को मैंने देखा है। तो धोनी हमारे माही हमारे ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है ना। इनकी कमी को तो हम बिल्कुल ही नहीं पूरा कर सकते हैं। धोनी ने जो क्रिकेट की दुनिया में अपना योगदान दिया है,
1: यह बिल्कुल ये हमेशा हम याद रखेंगे। और
0: अब चलो हो गया, अब कुछ खेल के बारे में कुछ और खबर है तो बताओ।
1: और खेल में अब कुछ खास अपने श्रोताओं को हमने जो बताई जानकारी यही जानकारियां थी।
0: हाँ, तो कुछ आगे कुछ सुंदर से नगमे सुना दिए जाए हमारे श्रोताओं को।
1: एक गाना है जो अपने श्रोताओं को सुनवाना।
0: हाँ बिल्कुल।

0: एक और बहुत ही सुंदर, मैं देख रहा हूं अखबार में, दुनिया में उथल पुथल के बावजूद भारत में विकास की गति अच्छी है। जैसे कि हमारे आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि भारत अपनी जीडीपी की दर को कायम रखेगा, अपने विकास की दर को कायम रखेगा। तो हम शुभकामनाएं देते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे नीति निर्धारकों को, कि उन्होंने वो अपनी ऐसी नीति बनाए रखें कि देश प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर सतत प्रयत्नशील रहे और अपनी उम्मीदों आकांक्षाओं पर कायम रहे। और क्या कहते हैं मीनाक्षी, और कुछ बताओ? अमेरिका से अभी कुछ एग्रीमेंट की बात चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की रशिया यात्रा और कुछ कुछ यात्रा के बाद कुछ कुछ अच्छी खबर आई है कि अभी भी हम पेट्रोल वगैरह हमें मिलता रहेगा, और कुछ फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ और कुछ टेक्नोलॉजी हमें मिलेंगे हमें, तो ये अच्छी खबर है। और कुछ एक बढ़िया सा गाना कुछ हो जाए मीनाक्षी।
1: अब बिल्कुल

आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर में कुमार राठौर और अलका याग्निक को। कार्यक्रम फिल्म संगीत का सफर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ವರ್ಧನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಿ ಶುಭಕಾಮನಾಓಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಆಪ್ಕಾ ಸಖಿಯೋ ಆಪ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೈ ಹಮ್ ದೋ ಸಖಿಯಾ. ಮೈ ಹೂಂ ಆಪ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಖಿ ರಾಖಿ
1: ಔರ್ ಮೈ ಹೂಂ ಶಿಲ್ಪಿ. ಧೂಲ್ ಧೂಸರಿತ ಗಾತ ಹೈ ಮುಖ ಮಾಖನ್ ಲಪಾಯೆ ನಟಖಟ್ ಸುಂದರ ಬಾಲ ಪ್ರಭು ಮನ್ ಕೋ ಬಹುತ ಲುಭಾಯೆ. सखियों, बाल कृष्ण के मन भावन रूप उनकी मनमोहिनी छवि की कल्पना मात्र से मन भाव विभोर हो जाता है.
0: आज का दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव तो है ही, सत्य करुणा प्रेम और धर्म की विजय का पर्व भी है सखियों.
1: हाँ बहनों, जब कारागार के अंधकार में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में जन्म लिया तो उनका ये अवतार ये संदेश था कि जब भी अन्याय अधर्म और पाप का अंधकार छाएगा तो ईश्वर उस अंधकार को हरने के लिए स्वयं प्रकट होंगे.
0: दुनिया को नीति और धर्म का मार्ग दिखाएंगे प्रभु. सखियों, हमारे पर्व त्योहार खुशियां लेकर आते हैं. हर दिन की आपाधापी तनाव के बीच कुछ समय हंसी खुशी के साथ उत्सव मनाते हुए गुजरे. घर परिवार समाज में प्रेम और भाईचारा की भावना विकसित हो. त्योहारों के साथ कुछ संदेश भी होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के जीवन से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, है ना शिल्पी?
1: बिल्कुल राखी. कर्म प्रधान जीवन है हमारा. अपना जो भी कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि आपका कर्म आपका फल मिलना तय होता है.
0: हाँ, जीवन के संघर्षों में भी धैर्य बनाए रखना, हिम्मत नहीं खोना. श्री कृष्ण ने सुदामा से सच्ची मित्रता की थी और निभाई भी थी. एक सच्चा मित्र आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा होता है और कठिनाइयों से उबार लेता है आपको. कैसी भी परिस्थिति हो, मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
1: बिल्कुल सखियों, मित्रता निस्वार्थ हो जैसी मित्रता श्री कृष्ण ने की. श्री कृष्ण से रणनीति कूटनीति सच्चा नेतृत्व दृढ़ता दूरदर्शिता क्षमा जैसे गुण सीखे जा सकते हैं जो आपके साथ आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं.
0: हाँ, श्री कृष्ण का मनमोहक रूप और उनका जो व्यक्तित्व है शिल्पी, उसके कई आयाम हैं. कभी बिल्कुल विचारक दार्शनिक या एक राजनीति का बहुत बड़ा उनको ज्ञान, बहुत कुछ उनका था. और साथ ही साथ वो कलाओं में भी निपुण थे. कहते हैं 16 कलाओं में निपुण थे भगवान, तो उनकी बंसी की जो धुन थी और ये भी सबका मन मोह लेती थी. तो आओ सुनते हैं कुछ ऐसा ही गीत.

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। मैं हूँ राखी और मेरे साथ है शिल्पी। और शिल्पी, आगे महिलाओं के लिए कुछ जानकारियाँ है ना?
7: बिल्कुल राखी, हम हमेशा अपने बहनों को हर दिन कुछ न कुछ अच्छी जानकारियाँ देते हैं। तो आज की जानकारी है कि महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता कितना जरूरी है।
6: सखियों, महिलाओं को परिवार की धुरी कहा गया है और सच भी है, क्योंकि घर की जो खुशहाली है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
7: बिल्कुल राखी, जैसा कि तुमने कहा कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संभालती, हम सब जानते हैं, बल्कि पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती हैं। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजती हैं, टिफिन बनाती हैं, पति को दफ्तर भेजती हैं, और उसके बाद घर में जो भी हमारे माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता, भोजन की चिंता और सब कामों को निपटाती हैं। और अपने लिए कहीं कहीं ध्यान तो नहीं रखती हैं, लेकिन आज वो बात हम नहीं करने वाले हैं। आज बहनों के लिए एक खास बात है कि भाई घर संभालती हैं, बजट बनाती हैं, तो वित्तीय समझ में आपको निपुण होना होगा।
6: क्योंकि बहुत हद तक वित्तीय जो समझ है ना, वो घर को चलाने में बहुत मदद करती है और ऐसे इसकी बागडोर उनके हाथों में होती ही है। तो बहनों, महिला चाहे कामकाजी हो या गृहिणी, चाहे व्यवसाय चला रही हो, हर स्थिति में आर्थिक समझ उनके लिए उपयोगी होगी।
7: बिल्कुल बहनों, वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ बैंक में खाता खोलना नहीं है, बल्कि इसका सीधा अर्थ है कि हर महीने का खर्च का हिसाब को रखना, समझना, और जितनी भी आपकी आय है उससे कुछ भी छोटी मोटी जो बचत की राशि होती है उसे बचाना और बजट बनाने में सूझबूझ के साथ चलना। क्योंकि राखी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास आमदनी कम होती है और खर्च ज्यादा होते हैं, तो उसी में महिलाओं की ये गुण है कि हम उसी में किसी तरह से ऐसे व्यवस्थित घर को करते हैं कि छोटी छोटी राशि कहीं ना कहीं हम बचा ही लेते हैं।
6: हाँ, बचपन से हमें आदत जो डाली गई थी ना, गुल्लक में पैसे रखने की, छोटी छोटी बचत करने की, तो बचत तो आगे भी काम आती है, लेकिन इसमें है कि बचत के साथ साथ खर्च कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षित भविष्य के लिए बचत को सही जगह पर निवेश करना भी एक कला है बहनों। साथ ही बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। बीमा और पेंशन योजनाओं को भी समझना चाहिए कि अपने पैसे कहाँ निवेश किए जाएं और ब्याज कितना मिलेगा, अचानक उसे निकालना पड़े तो उसके क्या नियम है, ये सारी जानकारी महिलाओं को भी होनी चाहिए।
7: क्योंकि राखी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उसको निवेश कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है कि हम चाहें तो पैसे को नहीं निकाल पाते हैं, तो बड़ी दुविधा होती है। हाँ। इसलिए सखी को ये जानना होगा कि अगर हम कोई भी प्लान ले रहे हैं, बीमा ले रहे हैं, पेंशन योजना ले रहे हैं, तो वो कब पूरा होगा, कब मिलेगा और किसी परिस्थिति में हम निकाल सकते हैं कि नहीं। बहुत सारी जानकारी है जो महिलाओं को होनी चाहिए अगर आप भविष्य के लिए आप निवेश कर रही हैं तो।
6: हाँ, और निवेश की बात जैसे तुमने कही शिल्पी, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि निवेश तो करें, लेकिन सोच विचार के बाद ही करें। टर्म पॉलिसी जाने सखियों, बचत छोटी हो सकती है लेकिन उसका महत्व तो छोटा नहीं होता, इसलिए अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूर बचाएं। अगर आप खुद से अर्न नहीं कर रही हैं तो घर में जो पैसे आते हैं उसे भी आप बचा सकती हैं।
7: बिल्कुल बहनों, हमेशा सावधानी और समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि वित्तीय साक्षरता महिला को आत्मविश्वास देती है तथा परिवार को आर्थिक संबल भी। इसलिए हमने ये बात कही कि जब राखी हमारे पास पैसा होता है तो कोई भी अगर घर में ऐसे हालात होते हैं या हमारे परिवार में कोई बीमार है, किसी बच्ची की शादी है या परिवार के किसी रिश्तेदार में किसी बच्चों का एडमिशन है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है अगर पैसे हमारे हाथ में हैं और सही जगह पे वे निवेश किए हुए हैं तो।
6: बिल्कुल बहनों, तो प्रधान योग है। हाँ, इसलिए आर्थिक सूझबूझ की जानकारी।
7: बिल्कुल, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे घर में, अगर ऐसा नहीं है राखी कि हम ही कमाते हो, अगर पुरुष भी कमाते हैं तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारे पैसे कहाँ पे हैं और इस सब

0: छोटी छोटी सी बातें हैं लगता है सुनने में, लेकिन जब हम अपने घर को चलाते हैं और बचाते हैं और संभाल कर निवेश करते हैं तो अंदर से बड़ा ये हमें अच्छा लगता है,
1: सुकून देता है। और हमारी जिंदगी में बैंकिंग का बहुत बड़ा महत्व है और एक तरह से हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। मोबाइल से पैसे भेजना हो या ऑनलाइन भुगतान करना हो, हम घर बैठे ही सारे भुगतान करते हैं। बेशक सुविधाएं बड़ी हैं पर सावधानी भी बेहद जरूरी है बहनों, इस बात का ध्यान आपको रखना।
0: बिल्कुल, क्योंकि सावधानी की बात तुमने राखी कही तो आए दिन हम इसके बारे में जानते हैं और कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई खबर को हम पढ़ते हैं। तो सखियों, मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए, इसलिए किसी अनजान के कहने पर ना ही पैसे को निवेश करें ना ही सही जानकारी दें, बल्कि स्वयं आप बैंक जाएं, पोस्ट ऑफिस जाएं, जहां भी आपकी इच्छा हो, लेकिन पूरी जानकारी लें और पूरी बात को जानें कि आप पैसे निवेश कर रही हैं। बार बार मैं कहती हूँ तो वो उसका क्या नियम है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल, और साइबर सुरक्षा की भी जानकारी आपको रखनी है, किसी को भी अपना पिन नहीं पता है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, साइबर आपको लालच देते हैं, तो ये बातें हम अक्सर बताते हैं बहनों को।
0: और छोटी छोटी राशि जो होती है बचत हमारे, हम सपने बुनते हैं भविष्य के लिए, इसलिए अपने बैंक खाते जैसा तुमने कहा, बचत, बीमा और जरूरी वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी खुद अपने पास रखें, किसी से भी साझा न करें और एक संकल्प लें कि हम बचत करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सही वित्तीय फैसले लेना हम सीखेंगे।

0: बेशक हमारा घर आंगन झिलमिल सितारों से जगमगाएगा, लेकिन सखियों इसके लिए आपको भी कुछ न कुछ करनी होगी, है ना?
1: हाँ, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा बहनों और आप प्रसन्न रहेंगी तो कुछ करने का भी मन होगा, कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव होने का, है ना? और इसके लिए तो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए खान पान में सुधार, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए आपकी, और साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में योग को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा की और भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण कर्म योगी ही नहीं थे बल्कि योग की भी उनको बहुत जानकारी थी, योगी भी थे, कर्म योगी भी और साथ में योगी भी।
0: बिल्कुल, तो बहनों हमें उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन में भी योग को लाना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय योग करें और बहुत हद तक निरोग रहा जा सकता है अगर हम नियमित योग करेंगे तो।
1: हाँ, आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से कम आधे घंटे का समय तो जरूर निकाल सकती हैं बहनों, और भाई समय तो सबको 24 घंटे के ही मिले तो उसमें हम लोग कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं, और इस समय में आप कुछ जो सामान्य योग हैं वो कर सकते हैं, जैसे वज्रासन करें आप, खाना खाने के बाद बैठ जाएं वज्रासन में, उससे खाना पचता है अच्छी तरह से, और भी बहुत सारे फायदे हैं। सूर्य नमस्कार करें, जिस जो कि बहुत हद तक संपूर्ण कहा जा सकता है उस आसन को, उससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। कटिचक्रासन करें, ताड़ासन करें, और रिलैक्स करने के लिए शवासन भी आप कर सकती हैं।
0: बिल्कुल बहनों, और योगाभ्यास हमेशा करते रहें। कुछ सहज प्राणायाम जैसे कि नाड़ी शोधन, भ्रामरी, अनुलोम विलोम करें और काफी उससे फायदा मिलेगा, और कपाल भाति का अभ्यास भी जरूर करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि पेट खाली हो, नित्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाएं, कहीं शांत और हवादार जगह पर बैठें, आरामदेह कपड़े पहने यानी कि ढीले कपड़े पहने। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी अभ्यास को नहीं करें।
1: हाँ, क्योंकि सर्जरी की स्थिति में अगर हम कड़ा अभ्यास कर देते हैं तो लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। योग करने के बहुत सारे नियम है बहनों, उसका आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के करेंगे तो उल्टा असर भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए हम हमेशा कहते हैं कि वो अपने मन से कोई भी योगाभ्यास शुरू ना करें। उन्हें अगर कुछ हल्के फुल्के आसन हैं तो वो ऐसे आसन हैं जो कि गर्भावस्था के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं, तो आप योग शिक्षक के निर्देशन में ही उसे आप कर सकती हैं। प्राणायाम भी किया जा सकता है हल्का फुल्का, जिससे आपका मन शांत हो और आपकी पूरी जो शरीर की प्रक्रियाएं हैं सुचारू रूप से चले।
0: बिल्कुल, और आप बहनों को लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां खुशी ही खुशी होगी।

0: तो बहनों, इस गीत के साथ ही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और शिल्पी को दे इजाजत। नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी राखी और शिल्पी के साथ, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 और 15 सेकंड। एक बार फिर से कार्यक्रम फिल्म संगीत। रितेश का नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना में कुमार शानू और अलका याग्निक को संगीतकार नदीम श्रवण। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अगला नगमा फिल्म दिल से।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: की घट पड़े भारतीय सेना।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। अगला नगमा फिल्म घायल से।

श्रोतो, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने

0: अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV...
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की जीएलएसवी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसएलवी F-17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। झारखंड सरकार ने बंद होने वाली कोयला खदानों के वैज्ञानिक पुनर्वास और सतत उपयोग के लिए गिरडीह ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की कर्मा ओसीपी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। सीएमएल, सीएमपीडीआई, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन और जीआईजेड के प्रतिनिधियों की बैठक में इन खदानों के लिए फाइनल माइन क्लोजर एंड रिपर्पजिंग प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। कर्मा ओसीपी के आसपास के प्रभावित गांवों में आजीविका के अवसर विकसित करने के साथ बंद खदानों की भूमि और जल संसाधनों का उपयोग पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और कौशल विकास के लिए किया जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची द्वारा संचालित मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 अभियान का समापन पायलट प्रोजेक्ट केंद्र पीपीसी बंद गांव में हुआ। इस अभियान का उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोगशाला से सीधे किसानों तक पहुंचाना और उच्च गुणवत्ता वाले कोकून उत्पादन को बढ़ावा देना है। समापन समारोह में निदेशक डॉ. प्रतीक कुमार ने तसर किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कीट पालन से जुड़ी चुनौतियों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। झारखंड में भर्ती व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर शुरू हुई भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज सरायकेला खरसावां पहुंची। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पेपर लीक तथा भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
3: पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के बाद अभी सरायकेला खरसावां की धरती आए हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है हरेक छात्रों का कि उसका नौकरी बेचा जा रहा है। नौकरी कोई खरीद बिक्री वाली चीज नहीं है आलू प्याज जैसा। नौकरी बिकना मतलब सिर्फ नौकरी बिकना नहीं होता है, सपना बेचना होता है, विश्वास बेचना होता है।
2: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद में जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए BCCL को ISM धनबाद के समन्वय से जमीन की सैटेलाइट मापी कराने का निर्देश दिया। समिति ने सीजुआ मेला टांड में टाटा द्वारा इस्तेमाल की जा रही सरकारी जमीन और अधिग्रहित रैयती जमीन के राजस्व भुगतान की रिपोर्ट भी मांगी। दामोदर नदी में अतिक्रमण हटाने के लिए BCCL ने 6 महीने में कार्रवाई पूरी करने पर सहमति जताई, जबकि लंबित भूमि मामलों और रैयतों के भुगतान के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। सत्ता पक्ष ने मुख्य सचिव से मिलकर आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों को अराजक तत्व बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप लगाना उचित नहीं है।
4: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो इस देश की, इस राज्य का भविष्य है, आने वाले समय की ताकत है, उनको इस प्रकार की भाषा से बोल करके उनको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो अपना व्यवहार दिखाया, हम लोगों ने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। हमसे बड़े लोग भी होंगे, उन्होंने देखे होंगे।
2: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं

0: और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। राजधानी रांची में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विभिन्न मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुड़ैया स्थित मदन मोहन मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। मंदिर के पुजारी के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: आज कृष्ण महामहोत्सव है, प्रातः काल पूजा हुआ, भगवान जी का श्रृंगार पूजा हुआ, संध्या 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राज्यपाल जी आएंगे, नेता लोग आएंगे, एसपी डीएसपी सब लोग आएंगे। उसके बाद संध्या 7:30 बजे महाआरती होगी। महाआरती होने के बाद रात्रि में 12 बजे भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
0: कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच पर रोक के लिए रांची में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने कर्नाटक के सफल मॉडल को झारखंड में लागू करने पर चर्चा की। अवैध लिंग जांच की सटीक सूचना देने वाले मुखबिरों को 1,00,000 रुपए तक तथा मामलों में प्रभावी पैरवी में सहयोग करने वालों को 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कड़ी निगरानी और PCPNDT एक्ट के 100% अनुपालन को अनिवार्य बताते हुए रांची, धनबाद समेत सभी जिलों में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 76,704 पर और निफ्टी 69 अंक की तेजी के साथ 23,943 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में CCL के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों के 189 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बीच पुरुष, महिला और वेटरन वर्ग में मुकाबले होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का किया सफल प्रक्षेपण। झारखंड में बंद होने वाली कोयला खदानों के पुनर्वास की पहल गिरिडीह OCP और रामगढ़ की कर्मा OCP पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित। रांची में मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 अभियान का समापन। तेसर किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले कोकोन उत्पादन के लिए किया गया जागरूक। भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सरायकेला खरसावां पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही जन्माष्टमी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: तो आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शिप्रा बोस।

अज हुन आए। आप सुन रहे थे अनुरंजनी में शिप्रा बोस के गाए चंद गजल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत में सुनते हैं कुछ गजल। कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, साथ ही गुलाम अली।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। दिन के 2 बजने वाले हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएं, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह एंड नर्मदापुरम. हैवी रेन इज लाइकली टू कंटिन्यू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट ओवर द नेक्स्ट टू डेज. अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल.
1: 10 major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
2: In Bihar, 8 rivers including the Ganga are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood affected areas today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kemah Stroop and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू. सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी. बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई. श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है. मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान. और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा. अब समाचार विस्तार से. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है. श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है. इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा.
4: I am very happy to announce that GSLV.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है. हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान

0: జియో ఆర్బిట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ డేటా ఫర్ అవర్ కంట్రీ.
1: బ్రిక్స్ ముఖ్య న్యాయాధీశ మంచ్ ఆజ్ సే నయీ దిల్లీ మే శురూ హో గయా. సర్వోచ్చ న్యాయాలయ ఇస్ మంచ్ కి మేజబానీ కర్ రహా హై. ఇస్మే బ్రిక్స్ సదస్య దేశో ఔర్ భాగీదార్ దేశో కే ముఖ్య న్యాయాధీశ, సర్వోచ్చ న్యాయాలయో కే న్యాయిక ప్రముఖ ఔర్ వరిష్ఠ న్యాయిక ప్రతినిధి భాగ్ లే రహే హై. ఏక్ రిపోర్ట్.
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा. इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा. यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है. श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं. ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं.
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें.
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई. एक रिपोर्ट.
4: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है. काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे. पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है. इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया. ये लोग फोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे. आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है. 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी. इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई. समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना.
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं. Form 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है. अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है. अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई. महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया. आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया. साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है. गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 3,000 रूपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
5: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
6: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
7: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की

0: ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:30 हुए हैं। जय भारती कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय भारती। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। 2:55 होने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने राज्य सरकार को युवाओं और उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि SC ST और OBC का आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। श्री अठावले ने कहा कि मोदी सरकार ने सवर्णों को भी EWS आरक्षण देकर हर वर्ग को न्याय दिया है।
1: संविधान में SC ST के लिए आरक्षण ही जाति के आधार पर मिला था। दलित लोग गांव के बाहर रहे हैं, आदिवासी लोग पहाड़ों में रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्न से और सभी संविधान सभा ने बाद में मान्यता दी और SC ST को आरक्षण मिला। उसके बाद भी ये मांग होती रही थी कि भाई हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी NDA की सरकार ने ये निर्णय लिया कि खाली OBC का सेंसस नहीं, तो हर जाति का सेंसस होगा।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को CEO बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। कोडरमा में उन्होंने JPSC और CGL परीक्षा धांधली की CBI जांच की मांग की और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने पर जोर दिया।
2: कांग्रेस दोहरी नीति अपनाती है। हम सब देखे, जब दिल्ली का था तो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने वो आ गए, धरना पे वो बैठे। लेकिन वही जब झारखंड में बच्चे अनशन पर थे, वहाँ किसी ने झांका नहीं। तो चूंकि वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ उनकी सरकार यहाँ समर्थन दी हुई है। JPSC हो, JSSC हो, CGL हो या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उसको रद्द करते हुए जिनकी भी इसमें संलिप्तता है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो।
0: प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र के खनन बिल के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। लोहरदगा में पार्टी के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने केंद्र पर राज्यों के खनिज अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांगे न मानने पर राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसरो द्वारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भारत के पहले उन्नत इमेजिंग उपग्रह EOS-5 के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। नेताओं ने इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की एक और गौरवपूर्ण छलांग बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो और भारतीय उद्योग का यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में विशेष मंगल आरती और भजन कीर्तन का दौर जारी है। रांची के कांके स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारी की गई है।
3: आज का दिन बहुत विशेष होने वाला है। इस बार हम लोगों ने 1,00,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया है। गोकुल वृंदावन के थीम पे अलग अलग भगवान की लीलाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है सुंदर झांकियों के माध्यम से, जैसे गोवर्धन लीला, कालिया लीला, पूतना लीला। इन सबको भक्तों को देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ पे भंडारा की व्यवस्था की गई है 1,00,000 लोगों के लिए और संध्या 4 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान का सुंदर अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा।
0: उधर पाकुड़ जिले में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर, राजापाड़ा के मदन मोहन मंदिर और तांतीपाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, मंगल आरती और भजन कीर्तन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, करुणा, सत्य और कर्मयोग का महान प्रतीक बताया। उन्होंने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण के आदर्श सभी को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड में सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इनमें सीओई सिमडेगा और सेंट जेवियर्स बरवाडी जैसी टीमें शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: श्रोताओ, हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
2: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
2: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओं जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
2: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
2: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
2: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा।
2: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
2: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
2: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
2: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
2: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर
2: श्रोताओं, कल्पना

0: कि जी एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहाँ के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।

0: श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद न आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ
3: हाँ, बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल,
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी साहब। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी
7: जी राणा जी महाराज,
5: जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है।
0: क्या कहा?
5: कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
7: जी महाराज।
5: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
7: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
7: रानी सा की जय हो।
8: आओ सखी, भीतर आओ।
7: जी वो
8: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
7: वो कुछ नहीं।
8: कहूँ ना सखी, क्या बात है?
7: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
8: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
7: पर हमें तनिक शंका होती है।
8: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
7: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
8: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई, दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते हैं।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और काई, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी साहब।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
8: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
8: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
11: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर
8: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
8: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से उसे नहीं मिलते।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिर्ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सबसे अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: इतनी मधुर आवाज।
2: हाँ।
1: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
3: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
4: ब्राह्मण भी भेजे गए।
1: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
3: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
0: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
5: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
6: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थीं।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
4: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
6: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
4: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
4: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
3: हाँ, ये बात तो ठीक है,
4: हो गई दुगनी। अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
4: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
7: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो
2: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
8: 300 किलोग्राम?
4: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
2: और चीटी की मम्मी,
3: उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
4: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो तुम छोटे डायनासोर के बाद हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुम लता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
9: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पेश है रांची मेलोडीज़।

0: श्रोता आप सुन रहे थे रांची मेलोडीज, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 4 बजने वाले आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन की प्रस्तावित बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे विश्व का अनोखा संस्थान बताया, जहां 3 से 8 वर्ष की बच्चियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्यों को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। कोडरमा में उन्होंने जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग की और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने पर जोर दिया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कम राजस्व संग्रह पर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि निर्धारित 41% लक्ष्य के मुकाबले राज्य केवल 34% राजस्व ही जुटा पाया है। उन्होंने कर चोरी रोकने और अगली बैठक तक प्रदर्शन सुधारने की सख्त हिदायत दी। सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र अंतर्गत खिंडा खपरा टोली के पास आज सुबह एक अनियंत्रित चेचिस ट्रक पेड़ और बिजली पोल को तोड़ते हुए एक कच्चे मकान में जा घुसा। हादसे में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राज्य में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन, राधाकृष्ण और इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और कर्म योग का महान प्रतीक बताया। और मौसम विभाग के अनुसार आज से 7 सितंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और वज्रपात की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: साथियों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से। 4:02 हुए हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। कंपेयर है हिदायतुल्ला और फौजिया। प्रस्तुति है पर प्रभु शरण की।

0: ये आकाशवाणी रांची है। सामईन की खिदमत में पेश है हमारा उर्दू प्रोग्राम। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया तजीन, और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ, उम्मीद है कि आप भी बखैर होंगे।

0: और हम दुआ करते हैं कि हमारे सामईन भी हमेशा बखैर रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, और मौसम का तो लुत्फ आप ही ले रहे हैं,
0: जी हाँ,
1: इसलिए
0: इतनी
1: कि
0: ज्यादा
1: बारिश,
0: बारिश।
1: हाँ, रिमझिम बारिश के साथ साथ कभी कभी तेज मूसलाधार बारिश भी है, और धूप तो गाहे बेगाहे देखने को मिल रहा है
0: जी हाँ।
1: सामईन। लेकिन तब यह है कि ऐसे में खुद की बचाव और एहतियात, ये तमाम चीजें जो है लाजिमो मलजूम है।
0: जी हाँ, हिदायतुल्ला, आप बहुत सही कह रहे हैं। और इस मौसम के मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले आज बातें करेंगे वो है संतुलित आहार के बारे में,
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया,
0: जो
1: इसलिए
0: जी
1: कि
0: हाँ
1: हमारा खुर्दोनोश
0: जी हाँ
1: अगर अच्छा होगा तो हमारी सेहत अच्छी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सेहत को ध्यान में रखते ही 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। जी हाँ सामीन, संतुलित आहार इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जिस्म की सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स फ्राहम करता है। इस वीक को मनाने का मकसद है लोगों में अच्छी सेहत और सही खुराक की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाना। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ताज़ा फल, हरी सब्जियां, दालें और अनाज शामिल करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। क्यों हिदायतुल्लाह?
1: बिल्कुल फौजिया, दौरे हाजिर में ये मौजू बहुत ही खास अहमियत रखता है, जबकि हम बिल्कुल वायली चीज और उटपटांग चीजों के खाने की हम आदी हो चुके हैं, और खाने में हमको हमारे जुबान का जायका ही सबसे ज्यादा महत्व और सबसे ज्यादा अहमियत लगने लगा है। तो फिर ऐसे हालात में और ऐसे दौर में जरूरी है कि हम आवाम के सामने खास इस मौजू पर बात करें कि ठीक है, जुबान के जायके के साथ साथ हमको अपने खास सेहत का भी तवज्जो देना चाहिए, और इसके लिए हमको, जिसको हम फौजिया संतुलित आहार कह रहे हैं ना, वो
0: जी हाँ
1: है
0: जी हाँ।
1: क्या असल में? वो जो है कम वायली चीजें हैं, और जो हरी सब्जियां वगैरह,
0: बिल्कुल
1: सलाद
0: बिल्कुल।
1: वगैरह, और उसके साथ साथ ताजा खुराक भी आ जाता है।
0: बिल्कुल। और सामीन, अभी हम देख ही रहे हैं कि हमारे बच्चों की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और सामीन इसकी मेन वजह है बच्चों में बहुत ज्यादा बाहर के खानों की तरफ रागिब होना। आजकल के बच्चों को घर के खाने पसंद ही नहीं आते हैं, वो केवल पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यही सब खाते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है।
1: देखिए फौजिया, आप तो अकेले बच्चों को बदनाम कर रही हैं, जबकि हम लोग खुद बच्चों को खराब करने वाले हैं। हमको खुद वो अच्छा लगता है, और हमको जब वो खाते हुए, इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चे देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ख्वाहिश होती है, और वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो बच्चों के साथ साथ कम से कम हमको भी तो अपने जुबान पर कंट्रोल रखना जरूरी है ना,
0: जी
1: अगर
0: जी
1: हम
0: बिल्कुल
1: अपने सेहत को
0: बिल्कुल
1: अच्छा रखना चाहते हैं तो।
0: जी हाँ। इसीलिए तो हम हमेशा अपने सामीन को बेदार करते रहते हैं कि हमारी सेहत के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। अच्छी सेहत सिर्फ बीमारी से बचे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान को दिमागी और जिस्मानी तौर पर फिट और तरोताजा रखती है। इसलिए इस न्यूट्रिशन वीक पर हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी खुराक को संतुलित बनाएं और एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, और एक और बहुत ही अहम मौजू है, और ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के, हमारे भारत के आन बान शान माने जाने वाले और जंग आजादी के बहुत ही बड़े मुजाहिद, जिनको हम ये कह सकते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके यौम पैदाइश के ऊपर हम शिक्षक दिवस या यौम असातिज़ा जो हम मनाते हैं, इनकी जो है ना बहुत ही खास अहमियत है, और इनके हालात जिंदगी के ऊपर हम कुछ बात करना चाहेंगे।
0: बिल्कुल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सफर एक अजीम उस्ताद से मुल्क के सदरे जमहूरिया बनने तक की एक निहायत ही बाअज़मत और बावकार दास्तान है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तालीम और तदरीस के नाम कर दिया, और अपने आला अखलाक, अद्वैत वेदांत के फलसफे की गहरी समझ और इल्मो दानिश से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। जब वे देश के सर्वोच्च ओहदे पर फाइज हुए तब भी उनका दिल एक मुअल्लिम का ही रहा। यही वजह है कि उनके यौम पैदाइश यानी 5 सितंबर को पूरा देश यौम असातिज़ा के रूप में मनाता है। ये दिन न सिर्फ डॉक्टर राधा कृष्ण की खिदमत को खराज अकीदत पेश करने का जरिया है, बल्कि ये इस बात का भी इतराफ है कि एक सच्चा उस्ताद ही समाज और कौम की सही रहनुमाई कर सकता है।
1: बिल्कुल फौजिया, वो तालीम के मैदान में बहुत ही गिरामाया खिदमात अंजाम दिया है आपने, और ये कहा जाए कि प्रोफेसर और वाइस चांसलर और मैसूर यूनिवर्सिटी और

0: कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसी मशहूर यूनिवर्सिटियों में फलसफे के प्रोफेसर रहे। बाद में उन्होंने आंध्रा के BHU यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दिया। और अगर आलमी तौर पर बात की जाए तो उनकी इल्मी काबिलियत का लोहा दुनिया ने माना है और वो इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मशरकी मजाहिब और अखलाकियात के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। उनके फलसफियाना और फिक्री सरगर्मियों ने उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मशरकी मजाहिब और अखलाकियात के प्रोफेसरशिप दिलाई।
1: जी हाँ सामईन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये सफर साबित करता है कि एक सच्चा उस्ताद न सिर्फ क्लासरूम के अंदर जहनों की तामीर करता है बल्कि अपने हिकमत और इल्म की बदौलत पूरे मुल्क की तकदीर संवारने की सलाहियत भी रखता है। इनकी तालीमी फलसफाना और कौमी खिदमात के इतराफ में हुकूमत हिंद ने इन्हें 1954 ईस्वी में मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा था।
0: आपकी गैर मामूली जहानतों और बसीरत को देखते हुए आज़ादी के बाद आपको कौमी जिम्मेदारियां सौंपी गई और आप भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। नायब सदर जमहूरिया 1952 में वो आज़ाद भारत के पहले नायब सदर मुंतखब हुए और मुसलसल दो मियादों यानी 1952 ईस्वी से 1962 तक इस ओहदे पर फायज रहे। सदर जमहूरिया मुल्क के दूसरे सदर यानी 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे सदर जमहूरिया मुंतखब हुए।
1: डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति भवन के शाहाना कल्चर को बदलकर इसे अवामी रंग दिया। वो एक गरीब और आम आदमी से भी इस एहतराम के साथ मिलते थे जैसे किसी गैर मुल्की सरबराह से। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आवाम की रसाई को आसान बनाया ताकि आम शहरी अपने सदर से बराह रास्त मिल सके।
0: और फौजिया, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो सदर बने तो उनके शागिर्दों और मद्दाहों उनके चाहने वालों ने उनकी यौम पैदाइश मनाने की इजाजत चाही तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने सादगी और असातिजा से मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए कहा कि अगर उनके यौम पैदाइश 5 सितंबर को यौम असातिजा के तौर पर मनाया जाए तो ये उनके लिए बाइस फख्र होगा। उनका कहना था कि मेरे यौम पैदाइश मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को यौम असातिजा मनाया जाए तो मुझे ज्यादा फख्र होगा। तब से आज तक हर साल हम 5 सितंबर को पूरे मुल्क में यौम असातिजा मनाते हैं।
1: हिदायतुल्ला, बातें हम और भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन हम लिए चलते हैं अपने सामईन को कलाम शायर की तरफ। और आप जानते हैं आज हमारे स्टूडियो में कौन मधु हैं?
0: जी बिल्कुल फौजिया, आज हमारे स्टूडियो में मधु हैं रांची झारखंड के जाने माने मशहूर शायर, बुजुर्ग शायर जनाब नसीर अफसर साहब।
1: जी हाँ सामईन, तो आइए समाअत फरमाते हैं कलाम शायर के तहत जनाब नसीर अफसर साहब से उनकी चंद खूबसूरत गजलें।
2: आकाशवाणी रांची के सामईन को नसीर अफसर का आदाब जोहार। गजल पेश खिदमत है, मतला अर्ज किया है।
0: इरशाद।
2: मैं तलाश रिज़्क हलाल में हूँ, मैं तलाश रिज़्क हलाल में हूँ, जिसने पैदा किया उसी के ख्याल में हूँ।
0: बहुत खूब।
2: मैं तलाश रिज़्क हलाल में हूँ, जिसने पैदा किया उसी के ख्याल में हूँ। सुबह को जो शाम में बदल देता है, शेर अर्ज क्या है?
0: इरशाद।
2: सुबह को जो शाम में बदल देता है, मैं उसी के जाहो जलाल में हूँ। जिस घड़ी से आईना दिखाया हूँ, जिस घड़ी से आईना दिखाया हूँ, उस घड़ी से मैं वबाल में हूँ, उस घड़ी से मैं वबाल में हूँ। शेर अर्ज क्या है कि रात दिन जिसकी फिक्र रहती है।
0: बहुत खूब।
2: रात दिन जिसकी फिक्र रहती है, मैं उसी के तसव्वुरे जमाल में हूँ।
0: क्या बात है।
2: रात दिन जिसकी फिक्र रहती है, मैं उसी के तसव्वुरे जमाल में हूँ। जिसने तहजीब सिखाई अफसर को, जिसने तहजीब सिखाई अफसर को, मैं उसी के दस्ते कमाल में हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: मैं उसी के दस्ते कमाल में हूँ। दूसरी गजल का मतलब समाज फरमाए। जमी पर आसमां उड़े जो खुश्को तर में रहते हैं, जमी

0: इरशाद
1: समाज फरमाए
0: जी,
1: हालात का टकराव भी हो सकता है, लगी चोट अगर घाव
0: तो घाव भी हो सकता है। वाह, हालात का टकराव भी हो सकता है,
1: हालात का टकराव भी हो सकता है,
0: लगी चोट अगर
1: घाव
0: तो भी हो सकता है।
1: शेर रस क्या है
0: जी?
1: सरे राह निगाहों को जरा नीची रख,
0: सरे राह निगाहों को
1: जरा नीची
0: रख,
1: उठा जो सर पथराव भी हो सकता है।
0: बहुत खूब
1: उठा जो सर
0: पथराव भी
1: हो सकता है
0: जी।
1: और ये शेर महंगाई को लेकर के
0: जी जी,
1: किलो भाव खरीदा किए हम सब कुछ, किलो भाव खरीदा किए हम सब कुछ, वो मीजान अब पाव भी हो सकता है।
0: वाह वाह, अब पाव,
1: किलो भाव खरीदा किए हम सब कुछ
0: जी,
1: वो मीजान अब पाव भी हो सकता है।
0: जाहिर सी बात है।
1: और ये शेर गरीबों में जरा शाम सवेरे रहना,
0: गरीबों में जरा शाम सवेरे रहना जी,
1: जमीयत में बड़ा भाव भी हो सकता है।
0: हाँ, ये बात तो है।
1: गरीबों में जरा शाम सवेरे रहना, जमीयत में बड़ा भाव भी हो सकता है। और ये मक्ते का शेर
0: जी,
1: बना ली आपने जो शीशे की बिल्डिंग अफसर, यहाँ कभी पथराव भी हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: बहुत खूब यहाँ कभी पथराव,
1: बना ली आपने जो शीशे की बिल्डिंग अफसर, यहाँ कभी पथराव भी हो सकता है।
0: बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: सामीन। तो ये थे जनाब नसीर अफसर साहब, और हम उनकी गजलों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फाजिया, इसके बाद एक और बहुत ही ख़ास मौजू है जो कि 8 सितंबर को हम मनाते हैं, साक्षरता दिवस। शिक्षकों का एहतराम यानी असातजा की इज्जत व एहतराम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए फौजिया के उस्ताज ही हमें बनाने का, निखारने का, सवारने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इज्जत और उनके एहतराम में अगर कमी हो तो ये गुस्ताखी होगी, ना कि सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने कैरियर के साथ भी। हम ये समझते
2: बिल्कुल
0: हैं।
2: बिल्कुल, शिक्षक यानी के उस्ताद हमारी जिंदगी में एक रोशन चिराग की तरह होते हैं, जो ना समझी और ना इल्मे के अंधेरों को खत्म करके हमें इल्म और तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि उस्ताद के एहतराम से मिलेगी कामयाबी, और ये बात बिल्कुल सच है। उस्ताद का एहतराम और उनका आदर करना सिर्फ हमारा नैतिक फर्ज ही नहीं बल्कि हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जो इंसान अपने उस्ताद की इज्जत करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, दुनिया में उसे ही सच्ची कामयाबी और इज्जत हासिल होती है। जी हाँ सामीन, हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि तालीम और साक्षरता किसी भी समाज की तरक्की और विकास की बुनियाद है। एक साक्षर और पढ़ा लिखा समाज ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।
0: और सबसे बड़ा पोस्ट दुनिया के अंदर उस्ताज का ही है।
2: जी हाँ, जी हाँ।
0: जो कि हमारे जिंदगी को संवारता है, बनाता है, निखारता है।
2: शुरू में हमारे दिमाग में बिल्कुल, हम बच्चे होते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है, तो जिस तरह उस्ताद हमें सिखाते हैं, जो चीजें बताते हैं, हम उसको अपनाते हैं, और अगर हम उनकी बातों को सही तौर पर सीखे, उनके बताए हुए राह पर चलें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं।
0: बिल्कुल फौजिया, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि उस्ताद की इतनी अहमियत है, उस्ताद को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपका मर्तबा क्या है।
2: बिल्कुल,
0: कहीं कहीं पर उस्ताद के साथ भी ये देखा जाता है कि कभी किसी शागिर्द से किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो उस गलती का बदला कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं उसके कैरियर से। रूहानी बाप कहा गया है उस्ताद को, जिस तरह से हमारे फादर हैं, हमारे बाप हैं, वो जिस्मानी हैं, तो उस्ताद को रूहानी बाप का हैसियत हासिल है। जाहिर सी बात है कि हम बच्चे हैं, कभी नादानी में हमसे कुछ हो जाए तो आप जो भी पनिश करना है उस वक्त आप कर लें, संभाल लें, हमारी कैरियर के लिए ऐसा ना करें कि उस चीज को दिल में बैठाए रखें और जब भी मौका मिले आप हमारे कैरियर से खेल जाएं, नहीं होना चाहिए। अगर ये
2: लेकिन ये बहुत
0: तो
2: कम है हिदायतुल्ला। हाँ। हमारे समाज में कि हमारे जितना अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, ज्यादातर उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये अच्छे होते हैं, जो बच्चों को समझते हैं, उनकी

0: निगरानी अच्छे से करते हैं। हाँ, कुछ कुछ उस्ताद ऐसे हैं जो सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं या अपने फायदे के लिए बच्चों को देखते हैं।
1: के बारे में हम ये
0: जी हाँ, तो हमें ठीक है, हमें अपने उस्ताद की एहतराम करनी है, लेकिन उस्ताद को भी उसी तरह अपने बच्चों से पेश आना है। तो सामने इस साक्षरता दिवस पर हमें ये अहद करना है कि हम न सिर्फ खुद इल्म हासिल करेंगे और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि अपने उस्तादों का दिल से एहतराम करके उनकी दुआएं और मार्गदर्शन हासिल करेंगे, क्योंकि इसी में हमारी असली कामयाबी छिपी है।
1: बिल्कुल फाजिया, और हमारे सामीन मुंतजिर हैं कि आप उनको खूबसूरत सा नगमा कब सुनाएं।
0: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, सुबह का वक्त है और मैं भी चाह रही कि अपने सामीन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और उन्हें सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक समाचार होंगे, माफ कीजिएगा, प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5:00 और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

औद्योगिक प्रसारण आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी कृष्ण जन्माष्टमी, दादा भाई नौरोजी, कुपोषण को दूर भगाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रभु शरण और शाम 6 बजे एक बार आप पुनः सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। खेती बारी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:02, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे बरसात के मौसम में मछली पालन में रखे ध्यान, विशेषज्ञ होंगे आशीष कुमार। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

और 6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। नागपुरी वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। भेंट वार्ताकार होंगे लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक। और कार्यक्रम हमारी दुनिया की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7:00 और 7:11 पर जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा हो भाषा में। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी आसपास की सफाई पर दें विशेष ध्यान, बचे रहें बीमारियों से, संतुलित भोजन से रहे हमेशा स्वस्थ। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज के दिन आप सुनते हैं 7:45 से प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।

0: रात 8 बजे हम आपको ले चलेंगे फिल्मी गीतों की दुनिया में। कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी रौनक जहां और 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनेंगे यादों से भरे चंद खूबसूरत गाने, कार्यक्रम होगा सुनहरी यादें। और रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे पंडित सियाराम तिवारी। इनसे आज आप सुनेंगे राग जय जयवंती में ध्रुपद गायन और राग शंकरा में गायन। और 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

इंदीवर के बोल अभी आप सुन रहे थे राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी कोयटा और इस गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स, डीआरएम 558 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज थी लता मंगेशकर की। और अब सुनिए प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिजा फिल्म से, आवाजें सुनिधि चौहान और कर्शन सरघाटिया की, गीतकार तेजपाल कौर, संगीतकार अनु मलिक।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन के अनूठे बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्योगों की स्थापना के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। प्रदेश भाजपा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक उपायुक्त और एसपी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। लोहरदगा में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं के स्वावलंबन को देखने अमेरिका का लाइवलीहुड इंपैक्ट फंड प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। चिरी गांव में सामंथा कार्टर और क्रिस्टीना ने लाभुकों से संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि ब्याज मुक्त ऋण से उन्होंने शराब का धंधा छोड़ किराना और नाश्ते की दुकान जैसी सम्मानजनक आजीविका अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने आज बरियातू स्थित जैप वन ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों और टाइगर मोबाइल के जवानों के लिए छोटे हथियारों का फायरिंग अभ्यास कराया। कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस नियमित प्रशिक्षण में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और सटीक निशानेबाजी पर विशेष जोर दिया गया। और राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अलौकिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय सहित राज्य भर के मंदिरों में विशेष विद्युत सज्जा की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अभिवरण 5:05 पर होगा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम। 5:30 बजे सुनिएगा खेती गृहस्थी और 6 बजे मुख्य समाचार होंगे। छः बजकर 2 मिनट पर आज सुनिए क्षेत्रीय भाषा में हो अकरा। 6:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम होगा नन्ही दुनिया। 7 बजे प्रादेशिक समाचार होते हैं, उसके बाद जिले में आजकल।

आपकी पसंद। ये कार्यक्रम 7:15 पर, 8 रजनीगंधा कार्यक्रम, 8:45 समाचार संध्या का प्रसारण होता है, 9 News@9, 9:15 आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, 10 इस केंद्र से गज़लों का कार्यक्रम प्रसारित होता है महफिल, 10:30 फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में, 11 हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़, और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम विवरण।

गुलदस्ता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे चंद गीत, आगाज कुमार सानू की आवाज़ से।

मैं कल से आज बेहतर होना चाहता हूँ। हर हार के बाद तैयार होना चाहता हूँ। जो लोग मुझे कमतर समझ बैठे हैं, उनकी आँखों का इंतज़ार होना चाहता हूँ। मैं गिरा हूँ तो उठूँगा और ऊँचा, हर ठोकर का असरदार होना चाहता हूँ। मुझे मंजिल से ज़्यादा सफ़र प्यारा है, मैं चलते हुए शानदार होना चाहता हूँ।

0: सब जब देखेगी क्या नजारे क्या सितारे
1: क्या नजारे थे कभी अब क्या नजारे हो गए, देखते देखते हम खुद से ही प्यारे हो गए। एक सूरज था जो हर दिन साथ चलता था कभी, अब तो साए भी हमारे हमसे न्यारे हो गए।

कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुन रहे थे एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे चंद गीत। ये आकाशवाणी चाईबासा है, शाम के 5:30 बजेंगे और आप सुन सकेंगे आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज का दिन बहुत ही खास दिन है, यानी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी। इस पावन बेला पर आप सभी श्रोता साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबों का जीवन मंगल हो, खुशहाल हो। किसान भाई बहनों, कृषि के क्षेत्र में भी हम सभी कई प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करते ही हैं ताकि उपज अधिक हो, लेकिन उनमें से रासायनिक खाद हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक देखा जा रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में हमें जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं बल्कि सुरक्षित और लाभदायक भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए इसका इस्तेमाल अधिकतर किसान कर रहे हैं। आप भी रासायनिक छोड़ करके जैविक खाद का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें तथा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। किसान भाई बहनों, रासायनिक खाद के तुलना में जैविक खाद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भी फसल क्यों ना हो, चाहे सब्जी हो, अनाज हो या फिर तिलहन हो, उनका कुछ अलग ही सुरक्षा और उनका गुण भी होता है। क्योंकि स्वाद की दृष्टि से हम तुलना करें तो फिर रासायनिक खाद वाले कोई भी सब्जी हो या फिर जैविक खाद के द्वारा उगाया गया सब्जी, दोनों के स्वाद में, टेस्ट में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसलिए हमें पारंपरिक तौर पर जैविक खाद का ही इस्तेमाल पहले की जैसा करना चाहिए, चाहे वो गोबर खाद हो, कंपोस्ट खाद हो या फिर केंचुआ खाद हो। जो भी हम पूर्व में हमारे जो पूर्वज करते थे उसी को फिर से अपनाएं और अपना मिट्टी, अपना स्वास्थ्य, अपना पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ कृषि और स्वस्थ कृषि बनाए रखें। इन बातों को आप सब जरूर ध्यान देंगे और बेहद अच्छी तरीके से अपने ही फसलों से उत्पाद किए हुए अवशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में कंपोस्ट खाद के रूप में, उनका खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस परिवर्तन में जरूर ध्यान देंगे और रासायनिक खाद को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो किसान भाई बहनों, बातें होती रहेगी, मुलाकातें भी हम करेंगे एक खास जानकार और प्रगतिशील किसान से भी। तो इसके पूर्व हम पहले मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक उड़िया लोकगीत निलय कुमार साहू एवं साथियों के स्वर में।

0: किसान भाई बहनों भाइयों, अभी हम आनंद ले रहे थे उड़िया लोकगीत का और कलाकार थे नीले कुमार साहू एवं साथीगण। इस लोकगीत के पश्चात हम जानकारी लेते हैं बागवानी के लिए हम शुरुआत कैसे करें, और इस विषय को लेकर के हमारे बीच में हैं एक प्रगतिशील कृषक और बागान किए हुए हमारे जाने माने कृषक मान सिंह मुंडा जी। आइए मिलते हैं, हम बागवानी के लिए क्या क्या खास बातें हैं इस पर जानकारी लेते हैं। हम मिलते हैं एक प्रगतिशील कृषक और भूतपूर्व मुखिया जी हमारे बीच में हैं मान सिंह मुंडा जी। तो हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, जोहार।
1: हाँ, जोहार जोहार।
0: तो मान सिंह जी, आज का हमारे भेंटवार्ता का विषय है बागवानी के लिए खास बातें। तो आप तो बहुत बड़े बागवानी किए हैं, हर प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि बागवानी के लिए शुरुआती में वो किस तरह करें, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए, गड्ढे या फिर पेड़ पौधों के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये शुरुआती दौर में आप किस तरह से किए, इसके बारे में ज़रा बताएं।
1: देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले तो ये बागवानी के लिए इस जगह से आप ज़मीन का चयनित किए, आपका पड़ती ज़मीन हो या जो भी हो, आप जो खाली ज़मीन जहाँ पर आपका कोई धान का फसल या अन्य फसलें नहीं होती हो, इसी जगह में आप बागवानी को अच्छी तरह से कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कि उस ज़मीन का उपयोग हो सकता है। सबसे पहले तो हम जैसे हम बागवानी के क्षेत्र में हम काम करेंगे जैसे फलदार वृक्ष, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, ये सब जो भी है। खास करके हम फिलहाल तो हम आम का पौधा को अधिक स्तर में लगाए हैं।
0: अच्छा।
1: मेरा लगभग 3 एकड़ ज़मीन पर उसका आम का हम फसल लगाए हैं। तो इसमें देखिए, जब उसको हम शुरुआत करेंगे तो पहले गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा जैसे हमको उसका दूरी पहले तय करना होगा। जैसे हम उसका जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, कलमी वाला,
0: कलमी वाला।
1: हाँ, कलमी वाला आजकल बहुत सुविधा है, बहुत सारी हर जगह मिलता है और फल भी जल्दी देता है। तो कलमी के लिए जगह हम जो तैयार करेंगे उसका दूरी पौधा से पौधा या पेड़ का से पेड़ का जो दूरी हम बनाएंगे वो 16 फीट का होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: आप चाहे दायां बायां जो भी होगा, आपका 16 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और वो जो गड्ढा हम बनाएंगे उस गड्ढा का चौड़ाई 3 फीट और गहराई भी 3 फीट होना चाहिए। इस तरह से हम बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और जैसे गड्ढा हमको तैयारी जो करने का जो सही समय है वो फरवरी मार्च अप्रैल तक में हमको गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए।
0: अच्छा, गर्मी के समय।
1: हाँ, गर्मी के समय में, क्योंकि जो गड्ढा हम तैयार करेंगे उसमें धूप और शीत लगना चाहिए। हाँ, 2 महीना या 3 महीना उसको हम गड्ढा बना के छोड़ देंगे। होने से क्या है, वहाँ उस जमीन पर जो भी कीटाणु रहेंगे, हमारे जो नाशक करता, हानिकारक कीटाणु,
0: जो कीटाणु वो सब मर जाते हैं।
1: हाँ, वो सब मर जाएंगे। उसके बाद में हमको जब गड्ढा में मिट्टी भरेंगे, उस मिट्टी भरने के पहले गड्ढा में हम कीटनाशक के रूप में, जैसे जैविक क्षेत्र में हम देखने जाएंगे तो हमारे गाँव देहात में बहुत प्रकार का यहाँ मिलता है, करंज का पत्ता हो या नीम का पत्ता हो या उसका जो खल्ली होता है,
0: खल्ली होता है।
1: हाँ, नीम का हो या करंज का, वो खल्ली को भी हम डाल सकते हैं। लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा में हम उसको डालेंगे, ताकि जब हम अपना पौधा को लगाएंगे, हम पेड़ को लगाएंगे, उसमें उसमें कीटों का जो है जो वहाँ आक्रमण होता है उससे बचेगा, नहीं होगा
0: और दिमाग भी नहीं लगेगा,
1: दिमाग भी नहीं लगेगा।
0: अच्छा।
1: इस प्रकार से ये तो हमारा देसी में जो भी मिलता है। उसके अलावा भी आज के तारीख में बहुत सारे कीटनाशक हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया।
0: अच्छा।
1: इसको भी हम लोग डाल करके, या तो एक प्रकार का थाइमेट वगैरह,
0: हाँ,
1: उसको भी हम यूज कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: मैंने कहीं कहीं पर जैसे नीम का पत्ता हो या खल्ली हो या करंज का उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसी स्थिति में हम गैमेक्सिन पाउडर या तो क्या बोलते हैं आपका, थाइमेट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से है। और फिर इसके बाद में जब हम पौधा चाहे पेड़ को हम लेके आएंगे, उसको लगाने का जो है वो बरसात जब शुरू होता है,
0: अच्छा,
1: उस समय हमको लगाने से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, जब हम पौधा लगाएंगे चाहे पेड़ लगाएंगे तो वहाँ उसमें सिंचाई की जरूरत होती है।
0: हाँ।
1: तो सबसे अच्छा है कि हम जब बरसात का जो शुरुआत होता है,
0: हाँ,
1: बारिश होगी उस समय हम रोपेंगे तो हमको उसमें एक सुविधा हो जाएगी सिंचाई के लिए।
0: हाँ।
1: इसमें और एक चीज ध्यान देने की बात है कि हम जब गड्ढा तैयार किए उसको 2 महीना या 2.5 महीना हम छोड़ दिए, इसके बाद में जो मिट्टी को उस गड्ढा में फिर दोबारा भरना है।
0: अच्छा।
1: मिट्टी को जब भरेंगे तो मिट्टी जो बाहर निकला हुआ है निकाले थे खोद करके, उसी मिट्टी को भरना है। उसमें उस मिट्टी में हम खाद वगैरह या जैविक खाद भी दे सकते हैं या सड़ा हुआ गोबर।
0: अच्छा।
1: उसको मिक्स करके हम लोग उस गड्ढा को फिल करेंगे।
0: अच्छा।
1: गड्ढा को फिल करने के बाद में कम से कम 10 से 15 दिन छोड़ देंगे, या तो एक या दो बारिश या 3 बारिश उसमें लगना चाहिए।
0: अच्छा।
1: ताकि उस गड्ढे में हमारा वो मिट्टी जो है हल्का बैठ जाए।
0: बैठ जाए। हाँ।
1: इसके बाद ही 10 या 15 दिन के बाद ही, मतलब 2-3 बारिश मिलने के बाद ही उस गड्ढे पर हमको अपना पेड़ का रोपाई करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ। और पेड़ के रोपाई के समय में ध्यान देने की बात है कि जो थोड़ा बहुत उसमें खाद तो हम दिए ही, ऊपर से अलग से अपने स्तर से मान ली DAP वगैरह या तो पोटास वगैरह का खुद मात्रा हम डाल सकते हैं। और एक चीज मिलता है उसमें, एक विटामिन टाइप का होता है जो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन का नाम उसको दिया जाता है। उसमें क्या है, जब पौधा या पेड़ को हम रोपेंगे उसके बाद उसका ग्रोथ बढ़िया होता है।
0: अच्छा।
1: जल्दी उसका ये होता है बढ़ने में सुविधा,
0: विटामिन
1: जैसे ही है, इसी प्रकार का है। और हम तो यही बोलेंगे कि हमारा जो जिस तरह से जो नियम है उसको फॉलो किए। हालांकि मेरा एक मनरेगा के तरफ से एक योजना लिए थे, फिर अपने स्तर से भी हम अलग से बागवानी शुरुआत में किए हैं।
0: अच्छा। तो जैसे हम लगाना का शुरुआत करते हैं बरसात के शुरुआत में ही, और लगाने के पश्चात जब वहाँ जमीन को हम लोग पौधे में किस तरह से, माने जमीन को समतल में ही रखेंगे कि थोड़ा सा गड्ढा रखेंगे, कहे कि बारिश का शुरुआत में वहाँ ज्यादा पानी जमने से भी तो जड़ खराब होगा?
1: नहीं, ये तो देखिए, हम जब मिट्टी को भरेंगे तो गड्ढा का लेवल से थोड़ा ऊपर करेंगे।
0: ऊपर करेंगे।
1: हाँ। जब बारिश होगी तो अपने आप लेवल में आ जाता है।
0: हाँ, बैठ जाता है।
1: हाँ। नहीं तो बारिश का समय में क्या होगा, हम मिट्टी को थोड़ा कम भरेंगे, ऐसे स्थिति में वहाँ गड्ढा हो जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो मोटा मोटी आपका 6 इंच या 1 फीट तक भी नीचे जा सकता है।
0: हाँ।
1: इसलिए हमको 6 इंच या 1 फीट तक हमको ऊपर ही मिट्टी को भरना है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, इस तरह का करना हो। अच्छा, दूसरा चीज है, जैसे मनरेगा का जो रूल है, जो नियम है कि हमारा जो मान ली 1 एकड़ में हम आम पौधा का बागवानी कर रहे हैं तो उसके चारों ओर एक ट्रेंच कटिंग, ट्रेंच कटिंग बोला जाता है उसको।
0: अच्छा, अच्छा।
1: ट्रेंच कटिंग करना है।
0: हाँ।
1: और ट्रेंच कटिंग के बाहर में ही हमको फिर घेरान भी करना है। ट्रेंच कटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, बारिश का जो मौसम में जो पानी बारिश होता है वो हमारा बागवानी के चारों ओर पानी का एक स्रोत बना रहता है, नमी बना रहेगा। उसी ट्रेंच कटिंग में पानी वहां भरेगा, फिर वहीं पर सोखेगा, सोख पीट का काम करता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसलिए कहीं पर भी हम आम का बागवानी करेंगे या पौधा का लगाएंगे तो उस तरह का हमको होना चाहिए। देखिए, सरकार भी अभी हर जगह ये प्लानिंग किया, कहीं भी टाँड जमीन है या कुछ भी हो अब नला, क्योंकि पानी का जल स्तर जो है बहुत नीचे चला जा रहा
0: है।
1: इसलिए सरकार का भी एक योजना है कि वहां पर हम टीसीबी बना करके इस पानी को वहीं पर हम जो बारिश का पानी है उसको हम उसी जगह पर ही उसको सोखने का काम हो, सोखपीट का काम हो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसी को लेकर के हम जहां भी बागवानी करेंगे तो चारों ओर एक ट्रेंच कटिंग होना चाहिए और उस पानी का जो बारिश का पानी है वहीं पर वो सोखपीट का काम करे।
0: अच्छा,
1: इस तरह का है।
0: अच्छा, शुरुआत में आप कलमी के पौधे लगाते हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जैसे लीची है, आम है और भी अलग प्रकार के हैं, तो फिर शुरुआत में आप ये पौधों को क्या एक प्रकार का, जो भी लीची है तो एक ही कतार में लगाना चाहिए कि मिक्स करके लगाना चाहिए, किससे सुविधा रहता है?
1: नहीं देखिए, वो तो अपने ऊपर है, लेकिन उसका जो दूरी बना रहेगा ना उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता।
0: हाँ।
1: जैसे हम अपने स्तर से एक बागवानी की 1 एकड़ 10 डिसमिल पर उसमें हमारा नींबू है, अमरूद है, आम है, आंवला है, लीची है, अनार है।
0: अच्छा,
1: मिश्रित बागवानी के रूप में उसको हम किए, क्योंकि हर समय में हर प्रकार का जो फल मिलना चाहिए इसी को लेकर के वो सब हम किए हुए हैं। हाँ, इसका बेनिफिट देखिए, हम तो अपने स्तर के अपने लिए कर रहे हैं,
2: हाँ सही बात
1: आ जहाँ तक होगा अपने यूज करने के अलावा कहीं अधिक हो जाता है तो उसको बेचते भी हैं, उसमें हमारा आर्थिक का भी थोड़ा सहयोग हो
2: हाँ
1: जाता
2: सही
1: है।
2: बात है।
1: हाँ
2: मतलब बागवानी ऐसी करना चाहिए कि जाके 12 महीने कुछ ना कुछ फल मिलते रहे और मुनाफा मिलते रहे, कहीं कि कभी खाली ना हो, इस तरह का होना चाहिए। जैसे समय के अनुसार केला भी मिले, फिर लीची मिले, फिर गर्मी सीजन में से आम के बाद में और भी अमरुद वगैरह सब दूसरे सीजन में मिले, इस तरह का हर प्रकार के मैंने मिश्रित बागवानी होनी चाहिए। तो
1: हाँ इसी प्रकार यही सोच करके हम तो किए हैं, और अच्छा है, अभी नींबू का भी बहुत फल आता है, लीची भी इस
2: अच्छा
1: बार बहुत अच्छा आया था। हाँ और अमरुद तो सीजन में आता ही है,
2: हाँ
1: ऐसा अमरुद आ जाता है जो कि थोड़ा सा उस सीजन में बहुत ज़्यादा अमरुद आ जाता है,
2: अच्छा।
1: कभी कभी तो उसको हम कहीं ले के भी नहीं
2: हाँ
1: चल
2: कभी कभी
1: पाते
2: बहुत
1: हैं, और
2: ज्यादा
1: बहुत
2: फल
1: ज़्यादा हो
2: आता
1: जाता है,
2: है।
1: बहुत ज़्यादा फल आता है।
2: हाँ
1: हालांकि इसमें मार्केटिंग का थोड़ा सुविधा हमारा इस कुचा एरिया में है,
2: हाँ
1: मार्केटिंग का सुविधा यदि होता तो सारा चीज़ हमारा चला जाता बाहर और बहुत कुछ इनकम भी हो सकता है, थोड़ा अभी तक मार्केटिंग का सुविधा नहीं हो पाया जिसके
2: हाँ
1: कारण थोड़ा सा हम लोग जो हमको आर्थिक के इनकम होना चाहिए थोड़ा कम हो रहा है,
2: कम
1: बस
2: हो
1: यही
2: रहा
1: है।
2: है, सही
1: हाँ
2: बात
1: यही
2: है।
1: बात।
2: अच्छा तो फिर जैसे कलमी पौधे सब कुछ लगा हुआ है, तो फिर ये कलमी पौधे लगाते हैं, बागवानी शुरू करते हैं, तो लगभग कितने वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है पूरा फल उल प्राप्त करने के लिए?
1: देखिए अभी कलमी को हम लगाते हैं, चाहे आम का हो, चाहे अमरूद हो, चाहे और अन्य जो भी है,
2: हाँ
1: खास करके हम देखेंगे तो आम का ही खास,
2: हाँ
1: वो तो हम लगा देंगे, कलमी है ना, वो आप इस बार लगा देंगे तो आने वाला साल में ही फूल
2: हाँ
1: आएगा,
2: फूल आ जाता
1: फल
2: है,
1: भी आ जाता है,
2: फल भी आता है। हाँ
1: लेकिन आपका जो पेड़ का जो उसका जो मजबूती है, उसका
2: हाँ
1: मोटाई है, कम होता है,
2: हाँ छोटा
1: नहीं
2: पौधा
1: छोटा
2: रहता है।
1: पौधा रहता है, तो ऐसा करना है कि पहला या दूसरा साल तक हम उस पौधा में फूल जब आता है तो उस फूल को तोड़ देना चाहिए,
2: अच्छा,
1: क्योंकि गाछ मजबूत नहीं रहेगा
2: अगर
1: और
2: रुक रहता है
1: हमारा
2: उस समय
1: आम का गुठली आ जाएगा तो वो तो पूरा झुक जाएगा,
2: झुक जाएगा। हाँ
1: टूट जाएगा या नीचे झुक जाएगा, इसीलिए जब तक वृक्ष का मजबूती नहीं होता है, 2 साल तक, 2 साल से कोई कोई गाछ तो 3 साल तक भी
2: 3 साल तक
1: उसमें
2: भी। हाँ
1: फल नहीं आने देना चाहिए,
2: हाँ
1: हालांकि वो प्रत्येक साल वो तो अपना सीजन आने से
2: होगा
1: वो
2: जैसे।
1: फूल आएगा, फल देगा ही, लेकिन जब एक बार 2 साल या 3 साल के बाद में आपका जब पेड़ मजबूत हो जाएगा तो
2: मजबूत हो
1: उसके बाद
2: जाएगा।
1: आप फल आए कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो अपना स्टैंड कर लेता है।
2: हाँ
1: हाँ
2: अच्छा। हाँ इस तरह से 2-3 साल इंतजार करने के बाद अगर फल लेते हैं तो पेड़ भी मजबूत हो
1: सुरक्षित
2: जाता
1: रहेगा।
2: है, हाँ सुरक्षित होता है।
1: हाँ
2: और घेरान की अगर बातें करें तो हमारे देहात क्षेत्र में, फिर अन्य खुले क्षेत्र में जो पालतू हमारे पशु हैं या फिर खुले जो पशु हैं वो भी नष्ट करते हैं, तो इसके लिए घेरान के लिए किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए?
1: देखिए अभी जिसके हिसाब से जो जैसा सक्षम है, जैसे आम बागवानी की तरफ से भी जैसे सरकार का भी योजना है, उसमें बांस का घेरान,
2: अच्छा।
1: जैसे बीच बीच में 5 फीट या 8 फीट के बीच में एक खूंटा गाड़ करके
2: हाँ
1: उसमें बांस को फाड़ करके घेरान किए हुए थे,
2: अच्छा।
1: वही है, और वैसे ही मेरा 2 बागवानी है उसमें बांस का ही घेरान किया है, हालांकि उसमें प्रत्येक साल थोड़ा मरम्मती करने की आवश्यकता है।
2: हाँ, समय समय
1: हाँ समय
2: पर
1: समय
2: टूट
1: पर,
2: जाता है या
1: हाँ
2: फिर सूख
1: टूटेगा,
2: जाता है।
1: खास करके हमारा इसे गांव देहात क्षेत्र में जब धान का खेती खत्म हो जाता है
2: हाँ
1: और यहाँ पर सारा जैसे रबी फसल भी खत्म हो जाती है,
2: हाँ
1: लगभग
2: तो
1: हम लोग अप्रैल महीना से गाय बैल को लोग छोड़ देते हैं, फिर ये जून का 12, 13, 14, 15 तारीख तक में फिर उसको सुरक्षित अपने चराते हैं या बांधते
2: अच्छा
1: हैं,
2: अच्छा अच्छा
1: तो इस बीच में जो पालतू जानवर हमारा है वो सब वहाँ तो घास वगैरह सब रहेगा, घेरन रहेगा,
2: हाँ
1: मान ली घेरान को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं
2: करते
1: इस
2: हैं।
1: 3 महीना के दरमियान में, थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है कि गाय बैल या जो भी पशुओं से हमको सुरक्षित करना होगा, और कहीं पर यदि हमारा घेरान बना हुआ है कहीं थोड़ा
2: हाँ
1: सा डैमेज है तो उसको थोड़ा मरम्मती
2: हाँ
1: करने की
2: मरम्मती करनी
1: आवश्यकता है।
2: चाहिए।
1: हाँ
2: हाँ हाँ
1: लगभग
2: देख
1: आपका 4 से 5 साल तक उस बागवानी के अंदर में
2: देखभाल
1: पालतू
2: जरूरी है।
1: जानवरों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ घास जो उगता है उसको चरने के लिए लालायित तो होते हैं,
2: हाँ
1: लेकिन हमारा गाछ वृक्ष को भी थोड़ा सा
2: हाँ
1: डैमेज
2: हाँ
1: करते हैं।
2: हाँ सही बात है,
1: हाँ इसलिए बांस का घेरान ही गांव
2: सुरक्षित
1: देहात में
2: रहता
1: सुरक्षित है, गांव
2: है।
1: देहात में बांस भी बहुत कोई लगाते हैं, थोड़ा सस्ता सुविधा में भी मिल
2: मिल
1: जाता है,
2: जाता है।
1: यदि अपना नहीं है तो खरीद करके भी आप लगा सकते हैं,
2: हाँ
1: प्रति बांस आपका 30 से 40 रुपया में मिल जाता है या कहीं 25-20 में भी मिल जाता है आकार प्रकार के हिसाब से।
0: हाँ।
1: और दूसरा चीज़ है अभी तो मार्केट में बहुत सारा तार का जाली निकला है।
0: हाँ, सही बात है।
1: किसी के पास यदि पैसा है सक्षम है तो लोग तार का जाली को भी लगा करके वो पूरा फिक्स कर देते हैं ताकि उसमें बैल बकरी भी प्रवेश नहीं कर पाए,
0: नहीं कर पाएगा, सुरक्षित भी रहता है और घरान भी साफ सुथरा लगता है।
1: हाँ हाँ हाँ, यही चीज है। वो तो जैसे किसान के ऊपर में थोड़ा गरीब किसान है तो नहीं कर पाते हैं।
0: हाँ,
1: वो अपना बांस से ही अपना घेरान करके भी सुरक्षा रखा जा सकता है,
0: रखा जा सकता है। तो अंततः हमारे किसान भाइयों को ये कहना चाहें कि जो भी किसान भाई ये लगाना चाह रहे हैं, बागवानी करना चाहते हैं, तो ये तो आप किसी भी पठारी जमीन में या फिर बंजर जमीन, किसी भी परती जमीन में इसका बागवानी कर सकते हैं जहाँ पर खेती नहीं होती हो। ऐसा बेकार जमीन को तो उपयोग में लाया जा सकता है ना।
1: हाँ हाँ हाँ, दूसरा चीज है अभी जैसे योजना में भी ये बात कही गई है कि आपका पानी का स्रोत क्या है।
0: हाँ,
1: जैसे आप बागवानी कर रहे हैं तो आपका सिंचाई का भी सुविधा होना चाहिए।
0: हाँ,
1: चाहे कुआं का व्यवस्था हो या नाला का व्यवस्था हो। हाँ, या तालाब की व्यवस्था हो, क्योंकि धूप का सीजन में, गर्मी का सीजन में तो हमको तो सिंचाई करना है। 2 से 3 साल तो हमको हर हालत में सिंचाई करना है। हाँ, इसीलिए उसका भी व्यवस्था हो। चाहे आजकल तो देखिए बहुत सारा मशीन के माध्यम से पाइप का भी लोग ले लेते हैं, पाइप के माध्यम से भी अपना जो बागवानी है वहाँ तक पानी का स्रोत मिलना चाहिए, वहाँ तक सिंचाई का सुविधा भी बनाना पड़ता है। जैसे हमारा जो बागवानी है, एक जगह तो डीप बोरिंग है और दूसरा जगह में है मेरा मनरेगा से हम कुआं लिए हैं।
0: अच्छा,
1: कुआं को बनाए। और सरकार का भी ये रूल है कि आप यदि आप बागवानी सरकार से आप मनरेगा से लिए हैं तो आपको वहाँ कुआं भी उपलब्ध कराती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, उस प्लॉट के अंदर हो या अगल बगल कहीं भी, वहाँ आप कुआं बना सकते हैं ताकि उस कुआं के पानी से आप धूप का समय में जब जरूरत होगा तो आप सिंचाई कर सकते हैं।
0: हाँ, मतलब सिंचाई का मतलब समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो मान सिंह जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बागवानी के लिए जो जरूरी बातें हैं ये सब बताई आपने। इसके लिए आपको हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: धन्यवाद, जोहार।
0: इस मुलाकात के पश्चात हम पुनः मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक संथाली लोकगीत।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। कोडरमा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन के अनूठे बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्योगों की स्थापना के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। प्रदेश भाजपा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक उपायुक्त और एसपी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत छोटकी बैरगी जंगल में करीब 25 हाथियों के झुंड की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। एलिफेंट ड्राइव टीम हाथियों पर लगातार नजर रख रही है। राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अलौकिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय सहित राज्यभर के मंदिरों में विशेष विद्युत सज्जा की गई है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड के सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नया आकाशवाणी रिया चयबासा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ रेबन आई मतन ना आई पिंग चे बजाय न ते 2 मिनट हो बस काया ना कार्यक्रम हो आकड़ा आई मिच पिन लगे अलिंग बिठाओ जो कने महेंद्र गोई सभी को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लिखा गए इस पूरे लिंग सागु मगते डे इनको मियन मियन तिलिंग आई मिच पिन ना आयुम लगे रेडियो जपार गे तैन சேமர் நாதத்ரம் ஜப்பாவஜோ இனபன் என்றது எல்லா அயோமிச்ச பின்னரிங் சபிக்குவாய்த்து ஐயார் அட்கர் ஜகர் யா விசேது மினா கோணக்கோ அசுல்கேத்து லாப் கோணக்கோ அசுல் இசுக்கும் புஞ்சியேத்துவு உங்குடு தைய சில்கத்த மினரதோ மியன் கலுட்டி அண்டோ மிடோ சாண்டிக்கோணும் कोणों को इनका दो अपे किस्म रेन को मिना कोआ सभी को इते मरंग कोणों को दो रांझांस को मिता कोआ इन तला को ओकन को डाली येने को इनको जोपे कोणों को इनाते सभी को इते लिटे रेना चे उड़ीन को दो इनको साधारण कोणों को इनको अबु जान जितन तारे बुंगा बुरुरियो इनको इस पूरे नंद्रिया गोरो जो मिना ओकन को अबु वो मनिया चे मानसिक जान जितन हसू केंद्रियो ची हन को आ रही हो मरंग को आ रही हो इन लेखाते अंदो नैन कोणों को असुल लगिडो अबो जुका लेकन जाना ते के बिट कहते रही हो कुची लेका भाई कहते रही हो को असुल दियो अंदो नेको आदो ना दो हाथो हाथो रे बाबा रूंग तिया मिशन को रिके याना एन लुपु अंदो मांडी या तो बाबा जुका इनकोलो मिसा कहते दाकोलो सुइडे को रदो नेको ऐसो बुगिल कते को जमे चिमिन बुगिल कते जोमिचे कुआ इमिन अजा को मारंग ओंडो नेकुआ जिलु जोमेतिया अबुए लगे एसुरिना गोरो जोमेना चिलिकेते मेन रदो नेले कते मिसे मिसे अबु जान जितना कोगे बु जोमिया एन रदो होमो कुरे 20 लिकना को बयुआ एन दो इनको नेन जिलु कोनो जिलु जोमेरे अबु इनको सभी चबाया ओंडो नेको दो बु अदान गया अटकरता बु ची सभी लिखना को हजमिया एन लिखाते नेकुआ जिलु अबु होमोरियो मीट बरोसरे मिसे या तो बारदव जोमेतिया एसुरिना दरकार नेको जोमेतिया मबु जोमे गया एन साथ साथ रे अबु ना नेको अकरिंग के तिरियो अबु पैसा टकाबु अर्जाव दिए अबु हाथो देशम रे दो नाला नौकरी तेन को ऐसो कमगमिना अबु पैसा टका दो एसुरिना गरोजुआ अकुन जिनिस को अबु कबो पूरा दई तेने एन लेकाना दो पैसा टका तेना पूरा हुआ इना मनते नेलकन कोनो को असुल केते अबु बो पैसा टका कबो अर्जाते अबु उड़ो के असुल को ते जदे अबन उड़ो मिना गया एन रदो अबन ताला कोनो को अकुन को जोपे कोनो को एनाते नन उड़िन जाते को इनको असुल रे ऐसो बुगिना चिन्ह मनते चे निन जोपे कोनो को अब परोप पुनै रे आंधी बाला रे नेको सणी कोड़ो कोलो मिडो मने बार सिर में या तो मे सिर में आधा होबयान रदो आको उपन किलो है ते मोय किलो जोंग आको जिलु बयुआ इन लेकाते नेको इस पूरे को आकरिंगो तीसिंग अटकर जगर दो मर नैन मुले रगे छबाओ तना निया अटकर जगर चनम एला उन्डो जुका अयरपा रांसा नबो दूर रेंगते मिसे

0: एंड चिल के मसाला को मिला
1: एंड्रे पाँच एक मैंने पाँच गमला या तो चार एक ही हो भाई हुआ जैसा ये जो मिना चाहे तो पाँच इंची जुड़े ही और तो इन दीवार बड़ी मजबूती तई ऊँचे मिलती आगे
0: तो बढ़ेंगे किड़े के तई
1: किड़े के तई
0: जा ना ये मैंने जैसे तकी बेरे मैंने जा कहाँ दी
1: कहाँ दी
0: भैया अच्छा नो दस इंच उसर तईन पे याद ना छिलके पे मिला चुको
1: इना इन छे छे कि छे कि या सात एक ही हो मिला हुआ
0: हाँ
1: मैंने ये अपना ये
0: हुआ निजी हुआ
1: निजी हुआ तो
0: अच्छा
1: मैंने छे एक रे बड़ी मजबूती उन टच के साथ तईन हो
0: हाँ अच्छा फिर ले क्या
1: ये इना के ना तो जैसे ढलाई करियो ढलाई रे उनंग ना जैसा इंजीनियर को लिखा हिसाब तो ये एक एक गमला ये सीमेंट रे मैंने दो गमला गिटिल
0: अच्छा।
1: तो चार गमला ये नंग दुर्कार
0: गिटी
1: गिटी
0: अच्छा
1: तो ना तो एक तीन चार को मिलाओ ये चीतने
0: अच्छा एक तीन चार
1: या
0: एक तीन चार मैन रे तो एक गमला सीमेंट रे
1: मैंने तीन गमला गिटिल
0: ना तो चार गमला गिटी
1: गिटी
0: अच्छा इन लगे इन तो डलाई लगे
1: डलाई लगे
0: अच्छा अच्छा या इन तो नलकन पाइटी को आपे राजमिस्त्री को निन आपे पाइटी है अच्छा इन तो आपे मिलो ये ची कुछ मिलो तन को अलग कोता ही
1: काम मिलो तन को अलग ही कोता ही हुआ
0: अच्छा इन तो कौन को रिजा कुपम तक कोची कुली कुपम तक को इनको तुरंत मिलो
1: ये आपको मिलो या ना तो हर ये जगह रे ना तो मशीन जो ले अंत तो मशीन तक ये
0: इन को मिलो
1: मिलो तना
0: अच्छा अच्छा
1: ना तो ने मिक्सर मशीन को लिफ्ट मशीन को ले अंत तो ना इन इना
0: इना तक
1: इना तक मिलो मिलो
0: अच्छा ना मिक्सर मशीन में रहता है चिल के एंड को दुलते है चिल के
1: ये मिक्सर मशीन रे को दुलते है एंड रे सीमेंट
0: माने ना सीमेंट के तेल नो के टिको सब
1: के टी सब है एंड रे जनाब दा को दुल के ते मिलाओ मिलाओ
0: अच्छा अच्छा दा को दुल दिया
1: या एंड रे केमिकल को मिसाया
0: अच्छा अच्छा
1: या केमिकल को माने जोर को अलका के जोर चमनते ये नमो डॉक्टर पीस मनते ये केमिकल सुनुम लिखना ताइनो है ना साबुन लिखा पोपो
0: ओ अच्छा इनाव एंड को दुल में सता
1: इनाव एंड को दुल में सता
0: ओ अच्छा ठीक है एंड तो आपे निना ना जो डलाइयो पर डाली ये जुड़ाइयो पर जुड़ाई ये प्लास्टर पर प्लास्टर है एंड तो डलाई प्लास्टर और जुड़ाई रही तो अलग अलग एंड तो मसाला को तो मिला होता रहा
1: ये या अलग
0: प्लास्टर रही तो चिल्के पे मिलो या
1: प्लास्टर रही हो एंड लिखा के
0: अच्छा
1: छे प्लास्टर हुआ
0: छे मैंने एक गमला सीमेंट रे छे गमला गिते अच्छा अच्छा अच्छा एन रे तो एन का हिसाब ता पे एन राजमिस्त्री को पाइटी का तो निना मिना का
1: ये आए ने
0: अच्छा ने वा जुड़ाई सीमेंट पे जुड़ाई छे उनो इटा इटा ते को उनो पे पाइटी दे ये
1: इटा इटा को ले पाइटी ये ना जैसे सेंटरिंग हुआ
0: या
1: सेंटरिंग पाइटी ओले पाइटी ये उनो रड को ले तो लिया मैं पीटर मिस्त्री वाले पाइट थे ना मियन सुमन के तो कहा
0: और राज मिस्त्री साथ साथ रे पीटर मिस्त्री को एंड रो पे पाइट दी
1: या ना ना वाले पाइट
0: ये मैंने चिल्के पे तो अगर है नहीं साथ ते ना को पे पाइट ही
1: है या
0: अच्छा अच्छा एंड दो इस बारी इन जगह बन जगह तना एंड दो सब इन पाइटे जुका जुका उको चिल्के आधाना चिल्के है तो तड़ा इन लिखा हिसाब थे अब इन इना जगह ता अब इन इन अब इना ऑल पड़ाव कुछ मिन लिखा मिना
1: ऑल पड़ाव को तो अलिंग हुड़िंग गलिंग ऑल पड़ाव का ना नो क्लास जंगलिंग पड़ाव या ना चिकेची आयरफा दो कलिंग बेटा दही ने अंते जम हुआ पा करे हो कमजोर के अटकर अंते ना डो चिके चिलके असूल हुआ चिना तले चिलके परिवार को चिके चलावाया मनते चम तो ने निकन मन रे उड़ू ये ने ची जाना बनो जाना रे पाइटी ये तो नहीं मनते नेन पाइटी दो ये तो किड़ा
0: ओ इना मनते नेन राजमिस्त्री पे दुबे ने पाइटी बन पाइटी ये ने
1: पाइटी ये
0: तो यान
1: या
0: चिमिन साल का बात ना बन नेन राजमिस्त्री बन पाइट तंतिया
1: अलिंग पाइटी दो है ना 77-78 आए थे मने ये राजमिस्त्री पाइट थे ने
0: मने 1977-78
1: आए थे
0: अंदर सुसाल अभी ना दो मिना नहीं रहिया मने अनुभव ही यानी कि एक्सपीरियंस मने टेकिंग इंग्लिश थे तो एक्सपीरियंस को मने दो हिंदी थे तो अनुभव ही अंदर अभी ना इस पूरे अनुभव मिना नहीं रहिया मने पाइटी रहिया मंते राजमिस्त्री रहिया अच्छा ठीक गया अच्छा निन पाइटी

0: ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱠᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱲᱮ ᱤᱝᱜᱩᱞ ᱞᱤᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱦᱚᱪᱚᱵᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ
1: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नन सड़े इंगुल्लो तेगे तिसिंगे होवाकड़ा कार्यक्रम चबावतना सने बीतने लिंगमर सेनो सेनो ते सबिन होवाकड़ा यमकिन हगमिसे को तुंडु पेरंडो मिसा लिंगमा इंद्र गुए पेते सबिन को सिविल जोहार।

0: जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में मनाया जाता है। बच्चों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना आठवां अवतार लिया था। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर बढ़ते अन्याय अत्याचार और अधर्म का अंत करने और कंस जैसे पापियों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म की पुनः स्थापना करना, मानव जाति को गीता के माध्यम से कर्म और सत्य का मार्ग दिखाना था। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, मध्यरात्रि में बाल गोपाल का श्रृंगार और पूजन करते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करके उत्सव मनाते हैं। तो आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश, फिर हम प्यारा प्यारा गीत भी सुनेंगे।
1: मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: चलिए इस प्यारे से गीत के बाद आइए सुनते हैं कुजोरी संदेश, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके दोस्तों से मिलेंगे।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
7: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
6: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: मैं शुभांकर गोप, संवाददाता।
9: मैं जयंत गोप, द्वारपाल।
10: मैं अश्रिता कुंकाल, राजकुमारी पद्मा।
11: चलिए, आप सबका स्वागत है आज के ड्रामा में। अशोक का शस्त्र त्याग। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका पहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उसके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं।

0: आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हो चुके हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम?
1: राजन, संवाददाता आना चाहता है।
0: आने दो।
2: महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं।
0: मारे गए हैं? तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो?
2: बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज ही बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है।
0: कलिंग के फाटक आज भी बंद है?
2: हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है।
0: बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगर

दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं।

0: मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे।
1: मगध की जय, सम्राट अशोक की जय।
2: सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना की कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं।

0: सुनो, तुम वीर कन्या, वीर भागनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उससे तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रतिज्ञा करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी।
1: यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी?
0: मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगना है, के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ।
1: अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा।
0: क्या महाराज?
1: शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी।
0: और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पहुंच दो, फूंक दो उस शास्त्र को। तुम्हें यह सिखाता है, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्व आहुति होगी।
1: बहुत हो चुका है राजकुमार।

0: मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: या क्या महाराज?
0: तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें।
1: मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है।
0: तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ, जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है।
2: अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं।
1: तो जाइए महाराज, स्त्रियां विनयते पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहे।
2: पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं।
3: कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा।
0: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा।
3: मैं सबसे प्रेम करूंगा। और मेरी करुणा का
0: सदावर्त
3: सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा।
0: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
3: बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म
0: शरणम गच्छामि।
3: संघम
0: शरणम गच्छामि।
4: धन्यवाद।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: चलिए, संदेशों के बाद आइए तो जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख की आवश्यकता होती है और उसके अंतर्गत उन आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक कि वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3 तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। चलिए बच्चों, कार्यक्रम के अंत में सुनते एक प्यारा संगीत।

इसी प्यारे संगीत के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू रानी को दीजिए, अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। यह आकाशवाणी चाईबासा है FM के 101.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति मामले पर विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री के फैसलों में कमी निकालने का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। छात्रों पर दर्ज केस के खिलाफ भाजपा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक होगा डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव। लोहरदगा के चिरी गांव पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत शराब का धंधा छोड़ आत्मनिर्भर बनी महिलाओं के स्वावलंबन को सराहा। और राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय समेत प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। कोडरमा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया।
4: बरसों बाद 500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद मंदिर बना है और उसको कैसे सुव्यवस्थित तरीके से जो हमारी सरकार है निश्चित रूप से ये प्रयास कर रही है कि बेहतर ढंग से इससे और आगे कैसे संचालित हो सके व्यवस्थित तरीके से कि इस मंदिर ट्रस्ट का निर्माण कराते हुए कि ये चले। इसके लिए नियुक्ति भी हुई है एयर मार्शल की और उसके साथ महिला सदस्य भी है तो निश्चित तौर पर ये जो सुविधाएं मिल रही थी उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
3: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन के प्रस्तावित बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे विश्व का अनोखा संस्थान बताया जहां 3 से 8 वर्ष की बच्चियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। रांची में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्योगों की स्थापना के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। श्री अठावले ने राज्य में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की।
5: जहां रिक्रूटमेंट हुई है पारदर्शिता से नहीं हुई है और इसीलिए उसको रद्द किया जाए। इसी तरह की मांग स्टूडेंट की थी, उनकी भावना को मैं समझ सकते हैं। इस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, जो लोग अभी इतने साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अन्याय होना ठीक नहीं है। स्टूडेंट के मांग को ध्यान में रखते हुए इसीलिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है।
3: प्रदेश भाजपा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक उपायुक्त और एसपी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।
6: छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उनको बंद करने के लिए 8 सितंबर को रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, गढ़वा, 9 सितंबर को कोडरमा, साहेबगंज, बोकारो, पलामू, सिमडेगा, चाईबासा, 10 तारीख को सरायकेला, पाकुड़, धनबाद, गुमला, लातेहार, चतरा और 11 तारीख को रामगढ़, देवघर, लोहरदगा, खुट्टी, गोड्डा और जामताड़। 2400 जिलों में 4 दिन तक लगातार हमारे कार्यकर्ता छात्रों पर जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किए गए उसको वापस करने के लिए डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम।
3: प्रदेश भाजपा ने आज 6 प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों की आधिकारिक घोषणा की है। जारी सूची के अनुसार मनोज वाजपेयी महतो को ओबीसी मोर्चा, अर्जुन सिंह को किसान मोर्चा, रंजय भारती को अनुसूचित जाति और सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान सौंपी गई है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉ सीमा सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के ताजदार आलम होंगे। लोहरदगा में फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं के स्वावलंबन को देखने अमेरिका का लाइवलीहुड इंपैक्ट फंड प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। चिरी गांव में प्रतिनिधिमंडल की समांथा कार्टर और क्रिस्टीना ने लाभुकों से संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि ब्याज मुक्त ऋण से उन्होंने शराब का धंधा छोड़ किराना और नाश्ते की दुकान जैसी सम्मानजनक आजीविका अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कम राजस्व संग्रह पर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि निर्धारित 41% लक्ष्य के मुकाबले राज्य केवल 34% राजस्व ही जुटा पाया है। उन्होंने कर चोरी रोकने और अगली बैठक तक प्रदर्शन सुधारने की सख्त हिदायत दी है।
7: जहाँ 41% कलेक्शन होना चाहिए था वो लगभग 36 के आसपास है, तो मैंने सबको निर्देश दिया है कि जो कैलेंडर टारगेट हर 3 महीने में कितना खर्च करना है ये टारगेट आपको पूरा करना चाहिए। और दूसरा मैंने उनको ये कहा है कि भारत सरकार की नीतियों के कारण जो MMDR एक्ट में संशोधन किया है उससे लगभग 14,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर के 22,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है।
3: वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने आज बरियातू स्थित जैप 1 ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों और टाइगर मोबाइल के जवानों के लिए छोटे हथियारों का फायरिंग अभ्यास कराया। कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस नियमित प्रशिक्षण में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और सटीक निशानेबाजी पर विशेष जोर दिया गया। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत छोटकी बैरगी जंगल में करीब 25 हाथियों के झुंड की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने 7 पंचायतों के लोगों को रात में बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। एलिफेंट ड्राइव टीम हाथियों पर लगातार नजर रख रही है। आस्था अनुराग और कर्मयोग के साक्षात विग्रह भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव आज समूचे राज्य में अलौकिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रात 12 बजे होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर राज्य भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता।
8: संध्या ढलते ही राज्य की धरा जय कन्हैया लाल की के भक्ति में जय घोष और भजनों के सुरों में सराबोर हो उठी है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और इस्कॉन देवालय को ताजे पुष्पों और सतरंगी विद्युत सज्जा से अलंकृत किया गया है, जहां श्रद्धालुओं की अनुपम छटा देखने को मिल रही है। बाबा नगरी देवघर, कोयलांचल धनबाद और संताल परगना के मंदिरों में भी उत्सव का उल्लास चरम पर है। रात ठीक 12 बजे कान्हा के दिव्य जन्म के शंखनाद के साथ ही महाआरती होगी और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इधर रांची के मेराबादी और अल्बर्ट एक्का चौक पर मटकी फोड़ की पारंपरिक उमंग और रासलीला की सांस्कृतिक आभा देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भारी बारिश से फिलहाल राहत है, लेकिन एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। आज से 7 सितंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और वज्रपात की संभावना है। वहीं 8 सितंबर को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड के सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इनमें सीओई सिमडेगा और सेंट जेवियर्स बरवाडी जैसी टीमें शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति मामले पर विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री के फैसलों में कमी निकालने का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। छात्रों पर दर्ज केस के खिलाफ भाजपा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक होगा डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव। लोहरदगा के चिरी गांव पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत शराब का धंधा छोड़ आत्मनिर्भर बनी महिलाओं के स्वावलंबन को सराहा। राज्य में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय समेत प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकी नाथ श्रावणी मेला महोत्सव अच्छी प्रकार संपन्न हो गया। इस वर्ष सावन में लगभग 47 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकी नाथ का जलार्पण किया। करीब 20% यानी 1,07,000 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम के माध्यम से बाबा के दर्शन किए। भक्तों ने मेले की प्रशासनिक व्यवस्था की भी सराहना की। भागलपुर से आए भक्त द्वारिका पांडे ने कहा,
2: झारखण्ड सरकार की व्यवस्था जो है बहुत बड़ी, जो ऐसा व्यवस्था इस साल पहला बार देख रहे हैं, जो पूरा चटाई बिछाया हुआ है।
1: बासुकीनाथ श्रावणी मेला धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक मेला भी सिद्ध हुआ। मेले में संताल परगना और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों की भी सांस्कृतिक विरासतों और परंपराओं को एक माह तक प्रदर्शित किया। इनमें ओडिशा की सैंड आर्ट को भी प्रदर्शित किया। वहां की प्रसिद्ध युवा कलाकार विश्वनाथ जेना ने हर दिन बालू के ढेर पर शिव कथा पर आधारित देव पात्रों और प्रसंगों के विभिन्न स्वरूपों को उकेरा। जीना ने बताया कि
3: बनाने में हमको मिनिमम 6-7 घंटा लगता है। मैं शिव जी के ऊपर जितना रिलेटेड होते हैं, काली जी, दुर्गा मैया, अर्धनारीश्वर के ऊपर मैं बना चुका हूँ। नंदी जी महाराज, वासुकीनाथ देव का मंदिर भी बनाया था एक दिन। और यहाँ का जितना टूरिस्ट आते हैं, जितना भक्त आते हैं, ये सब काम देख के बहुत खुश होते हैं।
1: सैंड आर्ट और उसमें देव कथाओं पर उकेरे गए प्रसंगों को देखकर भक्त भी खूब आनंदित हुए। रांची से आए कामेश्वर साहू ने कहा कि
4: प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाला का जो बना हुआ है शिव जी का प्रतिमा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखकर।
1: मेले में संताल परगना के हस्तशिल्पों, महिलाओं द्वारा उत्पादित खाद्यान्न और अन्य उपयोगी वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए। सरिता देवी कहती हैं कि
5: इस बार पीतल का सामान यहाँ और बांस का सामान लाया गया है, शिवलिंग लाया गया है पत्थर का, कि इन पर बहुत मार्केट में चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने दुमका जिले के युवाओं को अपनी उद्यमिता साबित करने और कारोबारी विस्तार के सपनों को पूरा करने का बड़ा अवसर दिया है। इन युवा कारोबारियों में शहर के महुआ डंगाल मोहल्ले के प्रभात कुमार भी हैं। प्रभात कुमार 10-12 सालों से कारोबार कर रहे हैं। पहले इनके पास पूंजी सीमित थे। 4 साल पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लिया और आज भवन निर्माण सामग्री के ये बड़े कारोबारी हैं। प्रभात कुमार बताते हैं कि
6: आज मेरा बिजनेस सही स्थिति पर है और सही तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी बैंक के द्वारा हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है और नरेंद्र मोदी जी की जो अपना जो योजना है उसके तहत बहुत सारे फायदा मिले हैं।
1: दुमका जिले में संताली के लिए एक भाषा एक लिपि की अवधारणा को अपनाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत केजी से पीजी तक संताली भाषा की पढ़ाई ओलची की लिपि में कराने की मांग की जा रही है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

सत्यम शिवम सुंदरम कार्यक्रम का आगाज इस फिल्म के गीत से। गुलकारा हैं लता मंगेशकर। सुनना चाहते हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, चांडिल से तुलसीदास महतो और न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना, खुशबू, खुशी और अभिषेक।

इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं महादेव शाल अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष गब्या और जयपाल यादव।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-99 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अलग अलग, यह है इस फिल्म का गीत किशोर साहब की आवाज़ में। सुना चाहते हैं पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी, हीरामानी, हिमांती डोबरो, साजन, सिद्धेश्वर और जानुम सिंह मुंडरी। पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी, कविता, हर्षमणि, पार्वती, सुहानी, संजय और नंदनी महली।

दलाल, ये है इस फिल्म का गीत। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। सुनना चाहते हैं सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, शहबाज और आसिफ। बरा निमडी चायवासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक, अमित, सुमित और शुभम।

कोयला, यह है इस फिल्म का गीत। आवाज़ें कुमार सानू और प्रीति सिंह की। सुनना चाहते हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, वैभव विशाल विपुल और भव्य कामरे, चाईबासा असुरा से सुखदेव गोप, रणवीर गोप, मकेश्वरी, सरोज, निशा और राजनगर से मांगीलाल, अन्नू, मुस्कान, आकांक्षा और विशाल।

लगान। या गया इस फिल्म का गीत आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी टुंगड़ी से सुशील कुमार सिंह, श्रीमती संध्या देवी, प्रियंका, काजल, कृष और किट्टू। आमजोरा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, शिवांश गोप, प्रेम, कपिल, संगीता, लिपि और दीपाली गोप।

नंद के आंगन में जब कान्हा मुस्काते थे, सुने सुने मन में भी फूल खिल जाते थे। मटकी देख के आँखों में शरारत भर लेते, माखन चुराते और भोले बनकर रहते।

मधुमती कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की। सुनना चाहते हैं माहौल डिहा सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी दीपक, राहुल, अनु, आयुष और डिस्को महतो। ग्राम दलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष, सोनू, गीता, सारिता, हरिका और तनुजा सोए।

शामिन, इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के ठीक 8 बज रहे हैं और अब लेकर हम आए हैं फरमाइशी नगमों का हमारा दूसरा कार्यक्रम रजनीगंधा। इसका आगाज़ फिल्म बंदिश के इस गीत से, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। सुनना चाहते हैं नागपुर से शैलेश गवानकर, वैशाली गवानकर और ध्वनि गवानकर, आदित्यपुर से नंदलाल गागराई, सुरेश लक्ष्मी और सरस्वती गागराई, अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, और अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया और मुस्तफ़ा खान।

नहीं आती तो उनकी याद बरसों नहीं आती, मगर जब याद आते हैं अक्सर याद आते हैं।

रज़िया सुल्तान। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं लता मंगेशकर और सुनना चाहते हैं अमला टोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक और दीपक श्याम कुंवर।

कटी पतंग। अब आइए सुनते हैं फिल्म का ये नगमा। गुलकारा हैं लता मंगेशकर और सुनने के ख्वाहिशमंद। मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता और रुद्र गुप्ता। लखनऊ से मुकेश, कुसुम, पलक और पंखुरी। राजनगर से मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल और मेनका। और ग्राम कोयरा से

मैं हूँ ना, आइए सुनते हैं फिल्म का गीत। आवाज़ें की वसुंधरा और साथियों की। सुनना चाहते हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, और मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया।

मैंने प्यार किया। यह इस फिल्म का गीत कमाल खान और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनना चाहते हैं। जिला स्कूल चाईबासा से गौतम होनागा, धनंजय, शंकर, परशुराम, दामू और ललित, डबवाली से बसंत कुमार चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, और मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा।

महबूबा। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। फनकार हैं किशोर कुमार, सुनने के ख्वाहिशमंद। आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान। चांडिल से तुलसीदास महतो और सरायकेला ग्राम कीता से राधाकृष्ण गोप, अमित, अंकित, सुमित और अभिषेक गोप।

दीवाना, यह है इस फिल्म का गाना। आवाज है कुमार सानू की। सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छन पुष्वे विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी और रायपुर से जावेंद्र कुमार ध्रुव। इसके अलावा जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया।

मैंने प्यार किया। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म के लिए शारदा सिन्हा का गाया ये नगमा। सुनना चाहते हैं लुधियाना से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत आदिबा, रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम और वलीउल्लाह, मंझारी से बसंत बेंकुरा, हेमंत पात्रो, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक, रिंकी, रूपाली और पीताम्बर।

मासूम। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जालौन से सत्येंद्र चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजेश राशि और शीतल राजेश, न्यू कॉलोनी टुंगरी से पंडित आर के पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक।

फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का हमारा रजनीगंधा कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाईवासा है फिल्म की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8:44 हो रहे हैं। ठीक एक मिनट बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, जिसका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी चाईवासा से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों

0: को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
6: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है. श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है. नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,287 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई. इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई. काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी. वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा. उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें. श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे. भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है. श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है. इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं.
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं.
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
0: ये आकाशवाणी है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया.
10: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया. इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी. राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की. एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया. यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है. अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल.
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया. सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया. मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ. भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
11: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोड़ी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
12: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. 3-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries, As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran, and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
14: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
13: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. In a social media post, Ms. Meloni expressed confidence that India and Italy will continue to strengthen the bond between the two continents and work together to develop the India-Middle East-Europe economic corridor. She said that the ties between the two nations are right now stronger than ever before. Ms. Meloni's response came after Prime Minister Modi congratulated her on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's post-war history. In a social media post, Mr. Modi said, "This milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian people in our leadership." Prime Minister Modi emphasized that a friendship has also been instrumental in strengthening the India-Italy special strategic partnership. Mr. Modi further said that he looks forward to continuing close cooperation to build a prosperous future for the people of both the countries. This is Akashvani giving you the news.
9: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
13: The External Affairs Ministry today said that 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighboring nation. Briefing media New Delhi today, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said 275 Indian nationals remain missing. He said India continues to be in close touch with the Nepalese government. He said India deeply appreciates the efforts of the Nepalese authorities in this regard. The spokesperson said the ministry has been regularly releasing the names of Indians who have been rescued. Mr. Jaiswal said 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. He said there are no Indian travelers who are stranded in the Tibetan Autonomous Region in China. Regarding India's support to flood-ravaged Nepal, Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance as per the requirements of the government of Nepal. He said in the coming days, India is planning to send more forensic kits, Bailey bridges and other materials that are requested by the government of Nepal.
6: In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly, and we will continue to support rescue, relief, reconstruction and recovery efforts in the country.
13: On the remarks of Nepal Foreign Minister, Mr. Jaiswal said, India has consistently maintained that the climate change is a common challenge and action in this regard must be based on the principle of common differentiated responsibilities and respective capabilities. Meanwhile, the death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,287. National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal said that the search and rescue operations remain active with around 5,083 people reported missing. The flood situation in Bihar remains grim as all major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak, Buri Gandak, Son and Koshi are in spate. We have more from a correspondent.
12: 16 districts including Patna, Bhojpur, Bhagalpur and West Champaran across North, Central and South Bihar are affected by floods. The spread of floodwaters into riverine and low-lying areas has disrupted normal life. Relief and rescue operations are being carried out on a war footing by the Disaster Management Department in the affected areas. To deal with any emergency situation, 9 NDRF and 27 SDRF teams have been deployed. Dry ration is being distributed among affected families while health department teams are camping in the flood-affected areas. Meanwhile, Chief Minister Samrat Chaudhary and Deputy Chief Minister and Water Resources Minister Vijay Kumar Chaudhary today conducted an aerial survey of the flood-affected areas. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
13: In Uttar Pradesh, several districts are reeling under the flood fury. A report from a correspondent.
15: 26 districts in the state, including Ayodhya, Varanasi, Azamgarh, Balia, Gorakhpur, Lakhimpur Khiri, Chitrakoot, and Barabanki, are affected by the floods. Relief and rescue operations are continuing in flood-affected areas on the instruction of Chief Minister Yogi Adityanath. According to the Relief Commissioner, despite more than 3.5 lakh people being affected by the flood, due to the activeness of the relief and rescue system, about 72,000 flood relief kits and lunch packets have been distributed to more than 3.5 lakh affected people. Additionally, more than 17,000 people have been evacuated to safer locations, including flood shelters. Extensive arrangements have been made from relief to health services. Meanwhile, the Meteorological Department has issued an alert for heavy rain in many parts of the state tomorrow. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
13: India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. Heavy rainfall is also expected over parts of northeastern states, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Sikkim, Bengal and Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. The Met Department predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Jharkhand. Meanwhile, the national capital received light to heavy rain in different parts today. The weather department has also predicted that the same weather conditions will persist tomorrow as well. The Supreme Court has directed 7 states to raise retirement age of judicial officers from 60 to 62 years. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi and Justice V. Mohanna directed Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu and West Bengal state to amend their respective service rules to formally enhance the retirement age to 62 years. The Apex Court has stipulated that judicial officers reaching the age of 60 will have to undergo a suitability and performance assessment by the concerned High Court before being permitted to continue until 62. In Jammu and Kashmir, security forces today killed one terrorist in an encounter in the Ashdar Gali area of Badgam district. A spokesman of Srinagar-based Chinar Corps said the operation was launched by the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and CRPF based on specific intelligence inputs about the presence of the terrorist in that area. The Central Bureau of Investigation, CBI, today conducted a nationwide crackdown in 3 major areas, cases of digital arrest, and detained 3 people under Operation Chakra 6. Taking strong action against the menace of digital arrest with its ever-rising cases across the country, the investigation agency coordinated searches in 89 locations across 20 states in the country. This is Akashvani, and you are listening to the news at 9.
9: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
13: The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, has been observed across the country with religious fervor today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies and visit temples. Sweets and other foods associated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended the greetings on the occasion of Janmashtami. In Gujarat, grand celebrations and special religious rituals are underway at major Krishna shrines, including the world-famous Dwarkadish, Dakor and Shamlaji temples. We have more from a correspondent.
16: Janmashtami is being celebrated at Dwarka's Jagat Mandir with special offerings including fruits, dal rice, sweets and chappan bhog spread. Thousands of devotees gathered in holy city Dwarka to celebrate Lord Krishna's birth anniversary and Sikh darshan. Raja Ranchorji temple in Dakor, a huge crowd of devotees was seen in the temple premises during the decoration aarti. On the other hand, various Krishna temples including ISKCON in Ahmedabad and Hare Krishna temple in Bharaj, a special Ras Lila was organized by youth on the occasion of Janmashtami. The temple premises were resonating with Krishna's bhajan, kirtan and jayaghosh. Janmashtami is being celebrated in the devotional atmosphere at the famous Shamlaji temple in Arvali district. Mayur Solanki, Akashwani News, Ahmedabad.
13: In Uttar Pradesh, the streets of Mathura and Vrindavan are reverberating with the chanting of Jai Shri Krishna. All temples are decked up with flower petals and colorful lights for midnight celebration. In Kerala, prominent Sri Krishna temples across the state witnessed a massive footfall of devotees from early morning hours. Special rituals were performed starting in the early morning at the Sri Padmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram and at Guru Vayur Sri Krishna temple. Janmashtami has also been celebrated with religious fervor and devotion at various places across Kashmir. Benchmark domestic equity indices rebounded today, snapping a four-session losing streak. We have a report.
17: The Sensex climbed 363 points to close at 76,515, while the Nifty added 24 points to settle at 23,898. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफा मीटिंगें की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फोरम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अदालती तआवुन को मजबूत बनाने, अदालतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज रफ्तार अदालती अमल के जरिए अवाम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ ममालिक

0: बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी समेत रियासत के 26 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी के सैलाब से मुतासिर होने के बावजूद राहत और बचाव निजाम के सरगर्म अमल होने की बदौलत सभी मुतासर अफराद में राहती किट्स और खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा अफराद को सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मकामात समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर कल शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयां और खाने पीने की दूसरी चीजें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपति आर मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने मजहबी नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए तकरीबात में शिरकत की। बेल्जियम के वजीर आजम बार डिवेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफद को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार डिवेयर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फिजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने इसे इसरो की एक किरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीरे आज़म इस मौके पर इस्तेमा से भी खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज नाम है और कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का अहम मरकज है। अर्जियाती साइंसेज के मरकजी वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत तलबा पर मरकूज प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने, उनमें बुनियादी साइंसी सोच पैदा करने और नौजवान जहनों को अर्थ सिस्टम साइंसेज मुताला कराने की तरगीब देने के लिए पुरअज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रियासतों को अदालती अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल को अपने मुतालिका सर्विस कवानीन में तरमीम करके रिटायरमेंट की उम्र बाजाबता तौर पर 62 साल करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने यह भी वाजे किया है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले अदालती अफसरान को 62 साल तक खिदमात जारी रखने की इजाजत देने से पहले मुतालिका हाईकोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी और मजूनियत का जायजा लिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलोचिस्तान के जियारत और सराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी हलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हुए। BLA के दावे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब पूरे बलोचिस्तान में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में मुल्क गीर कार्रवाई की और ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्क में डिजिटल अरेस्ट के मामलात में मुसलसल इजाफे के मसले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए CBI ने मुल्क की 20 रियासतों में 89 मकामात पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کے۔

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल पेश खिदमत है गज़लों का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें आज के फ़नकार हैं जगजीत सिंह।

महफिल। गजलों के इस दैनिक कार्यक्रम में आज के फनकार थे जगजीत सिंह।

सुरों के रंग पेश खिदमत है फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें आज हम लेकर आए हैं चंद मिश्रित गीत।

इस गाने के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम सुरों के रंग। इसमें आज आपने सुना मिश्रित गीत। FM के 101.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी।

वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहाँ युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।